सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:58:35 वे हैं। अब हमारी आज की प्रातः कालीन सभा आरंभ होती है। हमारे सभी श्रोताओं का इस सभा में स्वागत है।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के

0: वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भौतिक संसार में सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से लिप्त हैं। एक सच्चा रिश्ता ईश्वर का ही है, जो हमारे सभी पापों के साथ हमें अपनाता है। इसलिए दुनिया के झूठे सहारों को छोड़कर ईश्वर का ही सहारा करना चाहिए।

जिसका मन ईश्वर में रम जाए, फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे अपने विचार बदलने पर विवश नहीं कर सकती। जिसने स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया, उसे किसी बात का क्या भय हो सकता है।

आज के वंदना कार्यक्रम में आपने सुना अनुराधा पौडवाल, हरिओम शरण, संध्या मुखर्जी और वाणी जयराम की गाई ये भक्ति रचनाएं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं देशगान, आवाजें हैं शांता सक्सेना और मनमोहन पहाड़ी की।

0: इस देशगान के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद के विचार। आलेख और वाचन है श्री कृष्ण शरद का।
1: खूबसूरत जिंदगी बिताने के लिए आवश्यक है कि हमारे व्यवहारिक तर्क तरीके ऐसे हों जिनसे हम और हमारा परिवार ज्यादा से ज्यादा उलझनों से अपना बचाव रख सके। हालात ऐसे हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह कष्ट में है। किसी को धन का कष्ट है, किसी के बच्चे नहीं हैं, कोई ज्यादा बच्चों से परेशान है, कोई बीमारी से दुखी है, तो कोई मामलों मुकदमों से परेशान है। इन परेशानियों के बीच सभी लोग अशांतमय जीवन बिता रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा दुखी मानता है। जो लोग धन की कमी से दुखी हैं उनसे ज्यादा निरोगी दुखी हैं। इससे मालूम होता है कि वास्तविक परेशानी वह नहीं है जो हमें ऊपरी स्तर पर दिखाई पड़ती है, बल्कि हम लोग अपने अंतर मन की परेशानी से ज्यादा दुखी हैं। यदि हम दूर तक सोचें तो हम अपनी परेशानियों से बहुत कुछ छुटकारा पा सकते हैं। हम जिस स्तर में हैं पहले उसी के काबिल अपने दिल और दिमाग को बनाने का प्रयत्न करें। हमारे जो भी हालात हैं उन्हीं में खुश होकर रहें और आगे की तरक्की के लिए

अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करते रहें। हमें ये परेशानी ज़्यादा हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि हमारी आमदनी दूसरों से कम है। हम ये विचार नहीं करते कि बहुतों से हमारी आमदनी ज़्यादा है। इस बात पर ध्यान देने से मौजूदा आमदनी में ही हम ज़्यादा संतुष्ट रह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम चाहे जितने लड़ें, झगड़ें, उलझें और परेशान हों, इससे हम

परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से ये बात छिपी नहीं थी कि भरद्वाज मुनि श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्रीराम के रहस्यमय गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं। इसी कारण एक मूढ़ की भांति उन्होंने प्रश्न किया है कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र का गुणगान करते हैं, वे राम कौन हैं? याज्ञवल्क्य ने स्नेह के वश होकर भरद्वाज को तब उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए, साथ में जगत जननी सती भी थी। ऋषि ने शंकर को अखिल विश्व का ईश्वर जानकर उनकी पूजा अर्चना की तथा विस्तार से श्री राम की कथा कही और उनसे हरिभक्ति की महिमा सुनी।

अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरित मानस गान, स्वर था रविंद्र साठे का, संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा हरी खाद से ऊसर सुधार। जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने सुनेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। सुबह 7:31 पर कार्यक्रम होगा ब्रज माधुरी, जिसमें आज आप सुनेंगे ब्रज की माटी तो ही प्रणाम। इसके अंतर्गत श्री राधा गोविंद देव मंदिर की जानकारी दी जाएगी। आलेख प्रस्तुति सहयोग रश्मि शर्मा को और प्रस्तुतकर्ता विजय सिंह नौलखा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे प्रातः 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात में विषय होगा डिजिटल जनगणना 2027। वार्ताकार होंगे खड़क सिंह छोकर। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा समुद्र भी प्रदूषण की चपेट में। आलेख और वाचन होगा श्री अशोक गुप्ता का। ब्रज दर्पण कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:30 पर, जिसमें चर्चा होगी विश्व

एड्स वैक्सीन दिवस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी टीकाकरण के बारे में। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रोहितास तेवतिया, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मथुरा, संयोजन होगा ओपी सिंह का। प्रातः 10 बजे सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, फिल्म संगीत का कार्यक्रम 10:30 पर। फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन 11 बजे, प्रस्तुति होगी संजय सारस्वत की।

मध्याह्न 12 बजे विशेष फोन इन कार्यक्रम होगा। जनगणना 2027 के विविध पहलू। वार्ताकार और विशेषज्ञ होंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उपनगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी। इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। 12:30 पर ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ओम प्रकाश गोप के गाए लोकगीत। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम होगा वनिता लोक, जिसमें चर्चा होगी परिवार के साथ अपना भी रखें ख्याल इस विषय पर, और चर्चा होगी फकरुद्दीन अली अहमद जयंती पर। साथ ही वार्ता सुनिएगा जमाना मिक्स और मैच का, वार्ता करूंगी कृष्णा चौधरी। फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा अपराह्न 2:30 पर। संध्या 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में फखरुद्दीन अली अहमद जयंती की बात होगी। दूसरा विषय अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, और तीसरा विषय होगा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। साथ ही विज्ञान वार्ता वेबसाइट की दुनिया आप सुनेंगे, वार्ता करूंगी रुचि अग्रवाल।

संध्या 6:15 पर ब्रजित ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा होगी पशुओं में टीकाकरण और दूसरा विषय होगा गर्मियों में पशु प्रबंध। साथ ही सुनेगा भेंट वार्ता गर्मियों में पशुओं के रोग और बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राम सागर और इनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम संध्या 6:45 पर, 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा। कलाकार होंगी पूनम शर्मा, शाम सुहानी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर।

रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा, 9:15 पर सुहाने तराने और रात्रि 10 बजे सुनिएगा प्रायोजित नौटंकी, कुदरत की मार बच्चे कैसे। आलेख होगा ब्रजेंद्र सिंह वर्मा का। प्रतिभागी कलाकार होंगे ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश सिंह सिसोदिया, नसीम बानो उर्फ लता रानी, श्रीमती जाफरी, होतीलाल रामहेत, धारा खान, तारा चंद्र प्रेमी, गणपत लाल संगत कलाकार होंगे इनके साथ। हारमोनियम पर संगत करेंगे सूरज पाल, नकारा संगत करेंगे सतवीर और ढोलक पर संगत करेंगे राजेश खन्ना। इति जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। विषय है हरी खाद से ऊसर सुधार। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, ये आप भली बात जानते हैं कि ऊसर सुधार में

0: हरी खाद का अपना एक विशेष योगदान होता है। और हरी खाद क्या है, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं और इनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम आपसे यह चर्चा अवश्य करना चाहेंगे कि हरी खाद की सही तकनीक को अपनाकर ऊसर का सुधार कैसे किया जा सकता है। वह फसलें जो मिट्टी में जीवांश पदार्थ की मात्रा स्थिर रखने या बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं, उन्हीं को विशेष रूप से हरी खाद की फसलें कहते हैं। और उनका जो सस्य क्रियाक्रम है, उसका प्रयोग जो है, हरी खाद किस तरह देना है, इसके बारे में आपको आज जानना जरूरी है। हरी खाद के लिए प्रयोग होने वाली जो फसलें हैं वो दो तरह की होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं और अदलहनी फसलें होती हैं। दलहनी फसलों में सनई है, ढेंचा है, मूंग है, उड़द है, मेथी है, बरसीम है, सेंजी है, ग्वार और लोबिया है। और मौसम के अनुसार इनको बुवाई की जाती है। सनई की बुवाई विशेष रूप से मानसून से पहले की जाती है, मई जून के महीने में इसकी बुवाई कर दी जाती है सनई ढेंचा की। इनके प्रयोग से ऊसर भूमि में काफ़ी सुधार होता है। दूसरी फसल है ढेंचा, इसकी जो खेती है सूखी जलमग्नता और क्षारीय भूमियों में पैदा की जा सकती है। बीजों के अंकुरण पर नमी का होना आवश्यक है। बाद में यदि नमी की कमी भी हुई तब भी पौधों की बढ़वार बराबर होती रहती है। खरीफ के मौसम में अदलहनी फसलों में विशेष रूप से मक्का, ज्वार, भांग, सूरजमुखी, कोदो, जीरा आदि को भी हरी खाद के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। खरीफ की फसलों के अलावा रबी के मौसम में दलहनी और अदलहनी फसलों में विशेष रूप से हरी खाद के लिए जो प्रयोग की जाती हैं, उसमें मेथी, मसूर, सेंजी, मटर और बरसीम है। बरसीम की कई कटाई करने के बाद उसको हरी खाद के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। अदलहनी फसलों में जई, जौ, राई, सरसों, शलजम और मूली आदि को हरी खाद की फसल के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। हरी खाद में प्रयोग आने वाली फसलों के साथ हरी खाद उगाने की संभावनाएं या उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। वह इसलिए कि मिट्टी में जीवांश पदार्थ के स्तर बनाए रखना हमारे देश और ब्रज क्षेत्र में गोबर, कंपोस्ट और खलियों के द्वारा असंभव है, इसलिए हरी खाद की फसल उगाना अति आवश्यक है। लवणीय भूमियों में हरी खाद के प्रयोग करने से कई तरह के सुधार देखे गए हैं। अधिकांशतः हमारे किसान भाई जानते हैं कि हरी खाद की खेती के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था हरी खाद से ऊसर सुधार। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है एसडी बर्मन ने, आवाज़ है आशा भोसले की।
1: अरे अरे अरे अरे

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बावरे नैन फिल्म से, गाया है मुकेश और राजकुमारी ने, शब्द रचना है केदार शर्मा की और संगीत रचना है रोशन की।

बरसात फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इस गाने के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला, देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द, अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई, आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित

0: साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए, जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पुलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार कस्ते अरुण।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना

0: तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहां धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

मैया ब्रज की माटी तुम्हें प्रणाम। आज यह कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं या के अंतर्गत आप जानेंगे श्री राधा गोविंद देव मंदिर के बारे में। आलेख प्रस्तुति सहयोग रश्मि शर्मा को है और प्रस्तुत करता है विजय सिंह नौलखा। तो आओ भैया सुने यह कार्यक्रम।

0: ब्रज की माटी तो हे प्रणाम। कार्यक्रम सुनवे वारे सबई श्रोतान को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्रोताओ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं वृंदावन के सप्त देवालयन में से एक श्री राधा गोविंद देव मंदिर। श्री रंगनाथ जी मंदिर के सन्मुख भाग में प्राचीन एवं प्रसिद्ध श्री राधा गोविंद मंदिर स्थित है। प्राचीन मंदिर में श्री नीताई गौर और जगन्नाथ जी को विग्रह दर्शनीय है और बाद में श्री नंदकुमार द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर में श्री राधा गोविंद जी को विग्रह विराजित है।
1: ये इस समय आप गोविंद देव जी मंदिर के प्राचीन मंदिर गोविंद देव के घर मंदिर में खड़े हुए हैं। तो मंदिर गोविंद देव जी जो हैं कृष्ण जी के प्रपौत्र तो बजनाव के द्वारा निर्मित हैं। कालांतर में ये मूर्ति जो हैं जमीन के अंदर चले गए, राजा महाराजाओं के युद्ध होते रहे, इस वजह से मूर्तियों को जमीन के अंदर रख दिए गए। बाद में ये संतों को प्राप्त हुए तो बजनाव के द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई उसमें गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, केशव देव, बलदेव, हरदेव, तो ये सारी मूर्तियां ब्रज के अंदर जो है उनको विराजमान किया गया अलग अलग स्थानों पर। और इसीलिए शायद हमारे जो ब्रज क्षेत्र है वो बजनाव के नाम से ही ब्रज पड़ा।

0: जनश्रुति है कि प्राचीन काल में यह मंदिर 7 मंजिलन में निर्मित हो और सर्वोच्च गुंबद में 2.5 मन घी ते 1 दीपको प्रज्वलित करो जातो। दिल्ली के सम्राट औरंगजेब ने यह प्रकाश को देख के सैन्य द्वारा ब्रजमंडल स्थित अनेक हिंदू मंदिरों को धराशायी कर दिया, जिनमें ते प्रमाण स्वरूप श्री गोविंद देव जी मंदिर को आज भी यहाँ दर्शन किया जा सके है।
1: तो मंदिर जब बनाया गया ये 7 खंड 7 मंजिल का था ऐसा बताया जाता है। इस मंदिर के ऊपर होली दिवाली हमारे जो त्योहार हैं, 50 किलो घी का दिया जो है वो जलता था, जिसकी रोशनी दूर दूर तक दिखाई देती थी। समय निकलता रहा, अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां, वो जहांगीर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब काबिज हुए। तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे लाल किले में नजरबंद किया हुआ था। तो दिल्ली से औरंगजेब बीच बीच में अपने पिता की हालचाल देखने के लिए आगरे आते थे। तो किसी त्योहार के वक्त यहाँ औरंगजेब जब आए आगरे, तो उन्होंने रोशनी देखी और उन्होंने जानकारी की ये रोशनी कहाँ से आती है। उनको बताया गया हिंदुओं के मंदिर हैं, उत्सव पर ये दिए जलाए जाते हैं। बोलो हमारा साम्राज्य है, दूर दूर तक इतनी बड़ी कोई मस्जिद नहीं, तो हमारा अपमान, हमारे धर्म का अपमान तोड़ने के आदेश हो गए औरंगजेब के द्वारा। तो पहले तो मथुरा में जन्मस्थान तोड़ा गया है, बराबर में मस्जिद बनी है, उसका झगड़ा बरकरार है। उसके बाद यहाँ चढ़ाई हुई तो यहाँ जो सेवायत लोग थे उस समय, वो मूर्तियों को लेके यहाँ से जयपुर चले गए। तो कभी आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में हवा महल के ठीक पीछे गोविंद देव जी का मंदिर है, जहाँ इस समय प्राचीन मूर्तियां विराजमान है। मूर्तियां मिली नहीं औरंगजेब के सेना को, ऊपर से शिखर के रूप में जो हिस्सा था 4 से 5 खंड वो तोपों से गिरा दिया गया। अंदर मूर्तियां न मिलने पर दरवाजे पर अभी आप जहां से आए हैं, जो जहां इस समय चरणामृत वगैरह दिया जाता, उस स्थान पर मूर्तियां बनी हुई हैं दीवालों पर, वो सब डिफेस नष्ट कर दी गई हैं। और जो गर्भ मंदिर था वो बारूद लगा के उड़ा दिया गया, वो और भी ठीक पीछे था। इसके बाहर से आप परिक्रमा करेंगे, पीछे एक छतरी बनी हुई है, बीकानेर की महारानी ने बाद में उसको बनवाया है। तो उस स्थान पर थे, आज जो गर्भ मंदिर है ये सब नया निर्माण है। और इस समय जो है ये जो ठाकुर आप देख रहे हैं, ये लगभग 1850 के आसपास जो है ये विराजमान किए गए हैं, माने 1669 के आसपास मंदिर तोड़ा गया है और लगभग 1850 में ये मूर्तियां रखी गई। तो लगभग 150 से 250 वर्ष तक ये मंदिर ऐसे ही पड़ा रहा खंडहर के रूप में।
0: यह प्राचीन मंदिर के पास 24 परगना जिले के नंद कुमार वसु द्वारा नवीन श्री राधा गोविंद देव मंदिर स्थापित करो गयो है। श्री राधा गोविंद देव मंदिर के श्री विग्रह के संदर्भ में आपको जानकारी दे रहे हैं मंदिर के सेवायत श्री संजय गोस्वामी।
1: तो इस समय जो प्राचीन मूर्तियां हैं, इसमें मध्य में गिरिधारी गोविंद हैं, दोनों तरफ चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी, छोटे छोटे राधा गोविंद हैं, इनके बिना सेवा नहीं है, और नीचे जगदीश जी हैं, और बराबर में हमारे गिरिराज शिला हैं। ऐसे ही शिला आपको राधा दामोदर मंदिर में प्राप्त होगी, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह हैं, वो आपको मैं भी दर्शन कराऊंगा। तो इस मंदिर से नीचे जाएंगे, जब यहाँ से मूर्तियाँ चली गई, तोड़फोड़ जारी था मंदिर के अंदर, तो यहाँ के ब्रजवासियों ने, हनुमान जी का मंदिर है नीचे, आप ढलान से उतरेंगे बाईं तरफ, वहाँ सिंह पर हनुमान, वहाँ उनको एक प्रार्थना की है कि आप ही कुछ करिए। हनुमान जी जो है हमारे गोविंद देव के कोतवाल के रूप में उनकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ के ब्रजवासी ने उनसे ही प्रार्थना की, आप ही कुछ कीजिए हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है स्वयं तो शेर बन के अंदर से चौखट पर आ गए, पौर जो है चौखट को कहते हैं, और वहां शेर बन के बैठ गए और दहाड़ने लगे, और वहां से बंदर प्रकट हुए जिन्होंने सेना को यहाँ से भगाया। तो वो जब नीचे पहुंचे सेना जो है फौज, तो शेर की दहाड़ सुनकर यहाँ से भाग लिए। तो आज जो भी कुछ मंदिर बचा है वो हमारे हनुमान जी की कृपा है जी।
0: श्री रूप गोस्वामी श्रीमन

0: महाप्रभु के आदेश अनुसार वृंदावन आयकर लुप्त तीर्थन को प्रकाशित करवे में व्यस्त है गए, किंतु कहीं कोई विग्रह ना पाके वे चिंतित है गए। एक दिन विषण चित्त है के वे यमुना के तट पर बैठे। बाई समय एक ब्रजवासी ने आए के बिन्ते उनकी चिंता को कारण पूछा। गोस्वामी जी ने अपनी समस्त घटना और चिंता को विस्तृत रूप बिन के सन्मुख वर्णित कर दियो। समस्त विवरण को सुन के वे कृपालु ब्रजवासी गोस्वामी को गोमा टीली पे ले गयो और वह ब्रजवासी ने बतायो कि एक उत्कृष्ट गाय नित्य प्रति या स्थान पे आए के रुके है और गाय के स्तनते 100 गायन के दूर के बराबर दूध की धारा निकले है, यालिया ये ही श्री गोविंद जी का स्थल है। गोस्वामी जी ने उनके कथन अनुसार अनेक ब्रजवासियों की सहायता दे वह स्थान की खुदाई करवाई के श्री गोविंद देव जी के श्री विग्रह को प्रकट कियो।
1: तो ये गोविंद देव मंदिर जहाँ आप खड़े हुए हैं, पहले एक टीला हुआ करता था, गोमा टीला के नाम से जाना जाता था। और यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री रूप गोस्वामी जी जो हैं, यहाँ इस कुटिया बनाकर यहाँ भजन किया करते थे। तो एक दिन उनको स्वप्नादेश हुआ भगवान का कि आप हमें निकालिए। तो मंदिर के ठीक सामने जहाँ से आप लोग आए हैं, जहाँ रंगनाथ जी का मंदिर है आज, उस सड़क पर यमुना नदी बहा करती थी। तो यमुना के उस पार से लोग गाय चराने आते थे इस टीले पर, तो गायें चरती रहती थी। उनमें से एक गाय एक निश्चित स्थान पर खड़ी होती थी जिसका दूध स्वतः स्खलन होता था। ये दृश्य रूप गोस्वामी जी ने कई दिन तक देखा बराबर। एक दिन फिर उनको जब वो भजन में लीन थे, उनको आभास हुआ भगवान कह रहे हैं अब तो हमें निकालिए, जहाँ गाय दूध देती है मैं वहीं हूँ। तो गांव वालों के द्वारा खुदाई से गोविंद देव जी प्राप्त किए गए, वो कुटिया में रख दिया गया। भजन पूजन चलता रहा, समय निकलता रहा, अकबर का साम्राज्य था। तो आज जहाँ ये टीला था पहले और मंदिर जो बना हुआ है, वो महाराज मानसिंह के द्वारा 1590 में इसका निर्माण कराया गया। गोविंद देव जी की मूर्ति की स्थापना की गई फिर इस स्थान पर, जहाँ आज इस समय गर्भ मंदिर है। उससे और भी पीछे थे, वो वर्णन अभी आगे आता है।
0: दक्षिण देशवासी राधानगर गांव को वरेद भानु नामक एक ब्राह्मण राधा रानी के विग्रह को अपने पुत्री भाव से सेवा पूजा करो करतो। वह ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात गांववासी वह विग्रह की पूजा करने लगे। राजा प्रताप रुद्र के पुत्र एवं श्री गदाधर पंडित प्रभु के शिष्य को श्री राधा जी ने स्वप्न आदेश दियो कि वृंदावन में श्री गोविंद देव जी प्रकट भये हैं, यानिया मुए वही स्थान पे ले चलो। स्वप्न अनुसार राजपुत्र श्री गदाधर पंडित अपने दोनों शिष्यन के संग मिलके मार्ग में सेवा पूजा करते भये राधा रानी को वृंदावन लेके आए और श्री गोविंद जी के बाएं भाग में स्थापित कर दियो। शील रूप गोस्वामी के समय ठाकुर जी एक झोपड़ी में रहो करते और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य राजा मानसिंह द्वारा लाल पत्थरन को एक भव्य मंदिर को निर्माण करायो गयो।
1: ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राचीन मंदिर मदन मोहन जी के सेवायत थे और रूप गोस्वामी जी प्राचीन मंदिर गोविंद देव के सेवायत। तो ये दोनों जो हैं जब वृद्ध हो गए तो ये अक्सर गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते थे, और जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने असमर्थ हो गए, शरीर जो है उनका जब नहीं चलने लगा, परिक्रमा बंद हो गई। तो एक दिन बैठकर वो लोग विलाप कर रहे थे कि अब हम कैसे परिक्रमा जाएंगे, क्या होगा। तो एक बालक आया, उनसे बोला महाराज आप कैसे परेशान हैं, कैसे उदास हैं। तो वो बोले ऐसा है कि हम तो परिक्रमा जाते थे तो वो परिक्रमा हमारी बंद हो गई, अब क्या करें। तो बस इतनी सी बात है। तो वो बालक जो है दो शिलाखंड लेकर आया और उसके ऊपर खड़ा हो गया। तो एक शिलाखंड के ऊपर एक पैर का चिन्ह और दूसरे शिलाखंड के ऊपर दूसरे चरण चिन्ह ये छप गए उसके अंदर, और वो बालक वहां से अंतर ध्यान

हो गया तो उसी समय से वो उसी शिला की उन परिक्रमा किया करते थे। तो एक शिला आपको राधा दामोदर जी मंदिर में, क्योंकि जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का गोलोक वास हो गया तो प्राचीन मंदिर राधा दामोदर के सेवाएं, जो कि जीव गोस्वामी जी जो थे वो शरीर थे, रूप गोस्वामी जी के भतीजे थे, सनातन गोस्वामी जी के पुत्र थे, तो उनके पास जो है सेवा, तीनों मंदिरों की सेवा का भार जो है जीव गोस्वामी जी के ऊपर आ गया। तो वो वहां से शिलाखंडों को ले आए, उसमें से एक शिलाखंड राधा दामोदर मंदिर में है और एक यहाँ विराजमान है जिसके दर्शन आपको।

वृंदावन को यह मंदिर स्थापत्य कला और इतिहास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह विलक्षण मंदिर की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि मंदिर की अंतिम मंजिल पर खड़े हुए के दर्शक दूरबीन से दिल्ली की माऊ देख सके है, या कि कई मंजिलन को औरंगजेब ने तोड़वाए दियो। मंदिर पर खुदे हुए एक अभिलेख से स्पष्ट हुए है कि यह मंदिर को राजा मानसिंह ने सन 1590 में बनवायो। लाल पत्थर की यह मंदिर की लंबाई 200 फीट तथा चौड़ाई 100 फीट है। मंदिर के निर्माण में लगभग 10 वर्ष को समय लगो। अभिलेख के अनुसार यह के निर्माण में वास समय के प्रसिद्ध भवन निर्माण शिल्पी को लगाया गया हो। यही कारण है कि आज के इंजीनियर भी यह मंदिर के शिल्प को देख के अचरज प्रकट करो करे हैं। मंदिर की मिश्रित शिल्प कला को उत्तरी भारत में अपनो एक उत्कृष्ट नमूना है। खुजराहो के मंदिर भी या शिल्प के हैं या ही शिल्प के हैं। मूलभूत रूप से 5 मीनार बनवाई गई हैं, एक केंद्रीय गुंबद पे और 4 अन्य गर्भगृह आदि पे। औरंगजेब के आक्रमण के दौरान गर्भगृह पूरा गिरा दियो गयो हो और दूसरी मीनार कबू पूरी बन ही नहीं पाई। लगभग 150 वर्ष पूर्व मथुरा के तत्कालीन जिलाधिकारी F.S. ग्राउज ने यह मंदिर को निरीक्षण बारीकी से करो और अपनी पुस्तक मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोयर में विस्तार से लिखो। वृंदावन के मंदिरन में यह मंदिर सर्वश्रेष्ठ ही नहीं बल्कि उत्तर भारत को सर्वश्रेष्ठ देवालय है। या की स्थापना में यूरोपीय ईसाई पादरी परामर्श करो गयो। ये पादरी अकबर के दरबार में प्रभावशाली व्यक्ति हते और मंदिर के अंदर को दृश्य लंदन के सेंट पॉल कैथेड्रल को स्मरण करावे है। या मंदिर को देख के लगे है या की निर्माता ने या की नक्काशी पे विशेष ध्यान दियो होगो। मंदिर में एक एक पत्थर अत्यंत करीने से जुड़ो गयो है। मुख्य द्वार की सजावट में जयपुर शैली की छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। मंदिर में स्थापित मूर्ति को मुगल शासक औरंगजेब के हमले की आशंका के कारण जयपुर सुरक्षित भेज दियो गयो हो, लेकिन आज वो मंदिर की भव्यता वृंदावन आये वाले पर्यटकों को मौन निमंत्रण देती भई प्रतीत होए है।

ब्रज की माटी तुहे प्रणाम। जय के अंतर्गत अभी आपने सुनो श्री राधा गोविंद देव मंदिर के बारे में। आलेख प्रस्तुति सहयोग हतो रश्मि शर्मा को, प्रस्तुत करता थे विजय सिंह नौलखा। और भैया आओ अब आपको सुनवा में यह लोकगीत।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से

0: करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पर तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर।

0: करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आवाज राहत फतेह अली खां की। इरशाद कामिल के बोल और धुन प्रीतम की।

मैं थे ए हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति को बॉम्बे फिल्म में। आइए सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। पहली फिल्म से गाया है सोनू निगम ने।

एमएम क्रीम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और सोनू निगम को फिल्म पहेली के लिए। गीत को लिखा था गुलजार ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है सौतन की बेटी।

0: करो यार प्लीज जल्दी।
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसे ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है,
3: पर बैंकिंग में नहीं।
4: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
3: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है हिंदी वार्ता के अंतर्गत मुद्दे की बात। विषय है डिजिटल जनगणना 2027। वार्ताकार हैं खड़क सिंह छोकर।
1: हमारे देश में डिजिटल जनगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसको डिजिटल जनगणना 2027 का नाम दिया गया है, जो दो चरणों में क्रियान्वित होगी। प्रथम चरण की अवधि 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक रहेगी तथा दूसरा चरण फरवरी मार्च 2027 से प्रारंभ होगा। ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी तथा इसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसमें स्वगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन एक नई सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसके माध्यम से नागरिक स्वयं ऑनलाइन अपने आप अपने परिवार से संबंधित जानकारी दे सकता है तथा सरकार द्वारा नियुक्त जनगणना कर्मचारी के आने पर स्वगणना के संबंध में कर्मचारी को अवगत कराया जा सकता है, जिससे समय की बचत होगी तथा सटीक जानकारी उपलब्ध कराए जाने में सुविधा होगी। डिजिटल जनगणना का आयोजन पहली बार ही किया जा रहा है, इसमें पेपर वर्क लगभग नगण्य ही रहेगा। इस डिजिटल प्रणाली से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा तथा डेटा मॉनिटरिंग आसानी से किया जाना संभव होगा, जिससे कि प्रशासनिक कार्य सरल होंगे तथा प्राप्त होने वाले आंकड़े देश के समग्र विकास में अपनी अहम भूमिका स्थापित करेंगे। आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी तथा औपनिवेशिक काल से देखा जाए तो ये 16वीं जनगणना होने जा रही है, जिसके लिए गहनतापूर्वक विचार विमर्श करके चिंतन करके निष्कर्ष निकालकर प्रश्नावली तैयार की गई थी। इसमें 33 प्रश्न चुने गए हैं जिनका उत्तर लिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 16 जून 2025 को डिजिटल जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें प्रथम चरण में मकानों की गणना की जाएगी तथा चुने गए 33 प्रश्नों के उत्तर लिए जाएंगे। इसमें लिखित साक्ष्य देना आवश्यक नहीं होगा, मौखिक सही जानकारी अवश्य देनी होगी। जनगणना के संबंध में स्वतंत्रता के बाद जनगणना अधिनियम 1948 में बनाया गया था तथा नियमावली सन 1990 में बनाई गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के विशिष्ट कार्यों को जनगणना नियम 1990 में विधिक रूप से परिभाषित किया गया है, जैसे कि प्रमुख जनगणना अधिकारी अर्थात PCO को नियम 5 खंड 5 में तथा जिला व उपजिला जनगणना अधिकारी नियम 5 खंड 4 में तथा चार्ज अधिकारी अर्थात CO नियम 5 खंड 5 में परिभाषित किया गया है। भारतवर्ष में कुल 15 बार जनगणना हो चुकी हैं। सबसे पिछली 15वीं जनगणना सन 2011 में हुई थी। वैसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराने का प्रावधान है। उस दृष्टि से ये जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। जब परिस्थितियां सामान्य हुई

तो सरकार ने इसे 2026 में डिजिटल रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। ये प्रक्रिया अत्यधिक आधुनिक और प्रभावी रूप में सामने आएगी। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 में स्पष्ट उल्लेख है कि सरकार उन समस्त राज्य क्षेत्रों या उनके किसी भाग में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जब कभी वो ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे, जनगणना करने के अपने आशय की घोषणा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी जिस पर जनगणना की जाएगी। इसी तरह धारा 4 में उल्लेख है कि केंद्रीय सरकार उस संपूर्ण क्षेत्र में जिसमें जनगणना किया जाना आशित हो, जनगणना करने के संबंध में पर्यवेक्षण करने के लिए जनगणना आयुक्त की और विभिन्न राज्यों में जनगणना करने के संबंध में पर्यवेक्षण करने के लिए जनगणना कार्य निदेशकों की नियुक्ति कर सकेगी। सभी जनगणना कार्य निदेशक और सभी जनगणना अधिकारी विधिक प्रावधानों के अनुसार लोक सेवक माने जाएंगे। ऐसा उल्लेख भी जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 5 में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं राष्ट्रीय महत्व का कार्य है। जनगणना से देश के हर व्यक्ति के संबंध में गणना के द्वारा उससे जुड़ी जानकारी एकत्रित की जानी है। इससे देश की वास्तविक स्थिति सामने आती है। इसके आधार पर देशवासियों के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, विकास से जुड़े तमाम पहलुओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने में तथा विकास व जनहित में नीतियां बनाने में सही दिशा मिलती है। डिजिटल जनगणना 2027 भारत की ऐतिहासिक जनगणना होगी, क्योंकि पहली बार ही इसे पूरी तरह से डिजिटल जनगणना के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिससे डेटा संग्रहण पहले से अधिक तेज होगा, सुरक्षित होगा और पारदर्शी भी होगा। डिजिटलीकरण से डेटा एंट्री में होने वाली त्रुटियां भी कम होंगी तथा सही समय में डेटा मॉनिटरिंग और अपडेट भी संभव हो सकेगा। इससे सरकार को जल्दी और सटीक आंकड़े मिलेंगे जो नीतियां और योजना बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगी। 1 अप्रैल 2026 से प्रथम चरण का आरंभ हुआ है। इसमें मोबाइल ऐप, टैबलेट, ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग होगा। अपनी तरफ से स्वघोषणा की सुविधा रहेगी, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ एन्यूमरेशन कहा गया है। जैसा कहा जा रहा है कि स्वगणना का विकल्प एक नई और आधुनिक सुविधा है, जिसके तहत नागरिक स्वयं ही अपने परिवार से जुड़ी अपेक्षित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं भर सकते हैं। इसके लिए गणना कर्मी के आने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा स्वगणना का विकल्प दिया गया है, तो इस स्वगणना प्रणाली का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। इसका ये परिणाम होगा कि अपने संबंध में सही तथ्य भरने वाले को पूरी तरह स्पष्ट संज्ञान में रहेगा कि हमारे द्वारा किस प्रश्न का क्या उत्तर भरा गया है। इससे समय की बचत भी होगी तथा सटीक जानकारी सरकार को मिलेगी। ये बहुत ही हितकर व्यवस्था है। इसके लिए जो भी नियम हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। एक परिवार का एक सदस्य ही फार्म भरेगा। सही जानकारी देना नैतिक दायित्व तो है और विधिक रूप से आवश्यक भी है। गलत डेटा देना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं होगा तथा विधिक रूप से कार्रवाई किया जाना भी उनके विरुद्ध संभावित होगी। सबसे पहले भारतवर्ष में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई थी, जो कि पहली बार 1872 में प्रारंभ की गई थी, जो कि बाद में भी प्रावधानों के अनुसार समय समय पर होती रही। स्वतंत्र भारत में 1951 से लेकर 2011 तक 7 जनगणनाएं हो चुकी हैं। इस डिजिटल जनगणना प्रणाली से संपादित किए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता रहेगी तथा रियल टाइम में मॉनिटरिंग तथा वेरिफिकेशन हो सकेगा। इसकी प्रशासनिक कार्यों को करने वह देश के समग्र विकास के लिए अहम भूमिका होगी। इसलिए डिजिटल जनगणना में आमजन को अपेक्षित सहयोग करके देश हित में अवश्य ही बिना किसी देरी के सही जानकारी देकर योगदान करना चाहिए, जिससे कि नियत समय में जनगणना का कार्य संपन्न होकर सही जानकारी सरकार तक पहुंच सके। प्रथम चरण में मकान गणना का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें मकान सूचीकरण किया जाना है। इसमें प्रगणक घर घर जाकर गणना करेंगे। जागरूक नागरिक स्वगणना के रूप में भी अपने आप ऑनलाइन गणना फार्म भर सकते हैं। अलग अलग राज्यों की भाषाओं को दृष्टिगत रखते हुए 19 भाषाओं में निर्देशिका भी तैयार की गई हैं।

0: समयबद्ध तरीके से सभी चरणों का कार्य संपादित किया जाना है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि कोई भी मकान गणना में छूटना नहीं चाहिए, जिसके लिए आम जन का भी ये दायित्व है कि जो भी प्रगणक अर्थात जनगणना करने वाले कर्मचारी उनके पास पहुंचे तो उनको उचित समय में शीघ्रता से सही जानकारी अवश्य दें। उनसे बार बार आने का आग्रह न करें और न ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने दें जिससे कि उनको बार बार आना पड़े। यदि ऐसा होता है तो सरकार के कार्य में देरी ही होगी, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यथासंभव इसे पुनीत कार्य व राष्ट्र कार्य एवं जनहित का कार्य समझते हुए अपेक्षित व समुचित सहयोग करें, जिससे कि सही समय में आंकड़ों की शुद्धता बेहतर हो सके। आमजन से जो भी आंकड़े लिए जाएंगे तथा जिन प्रश्नों के उत्तर जाने जाएंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे तथा जनसूचना अधिकार के तहत भी कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी नहीं ले सकता है। एवं ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन आंकड़ों को साक्ष्य के रूप में भी पेश नहीं किया जा सकता है। इसका उल्लेख जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 में किया गया है। जनगणना में लगाए जाने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा त्रिस्तरीय प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था भी की गई है, जिसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण बैच चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्त 4 अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आवश्यक संख्या में प्रगणक और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिला जनगणना अधिकारी द्वारा जिले के भीतर जनगणना में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है तथा ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रगणक और पर्यवेक्षकों को उचित प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से प्रदान किया जाए। ये भी व्यवस्था रहेगी कि जनगणना में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारियों के बीच सही समन्वय स्थापित हो, जिससे कि सभी अपने अपने कार्य को सुनिश्चित रूप से एवं व्यवस्थित रूप से समय में सरलतापूर्वक संपन्न कर सकें। सही जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार व बार बार अपील भी की जा रही है। सही सूचना देने से ही देश की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी। वही आंकड़े भविष्य की नीति व योजना बनाने में काम आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा भी अपने मन की बात के उद्बोधन में भी जनगणना में आम जन की भागीदारी आसान होने की बात कही है। लगभग 1,20,00,000 परिवारों के मकान सूचीकरण का कार्य पूरा होने की बात कही है तथा जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित एवं गोपनीय रखे जाने की बात भी दोहराई है। जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए आमजन से अपील की है। इस डिजिटल जनगणना के पुनीत कार्य में आमजन अपेक्षित सहयोग अवश्य प्रदान करें, जिससे कि देश व समाज की प्रगति और विकास के लिए सही आंकड़े उपलब्ध हो पाएं और वो आंकड़े विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में आधार की एक कड़ी बन सकें।
1: मुद्दे की बात के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डिजिटल जनगणना 2027 इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे खड़क सिंह छोकर। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
1: IIMT विश्वविद्यालय मेरठ के तृतीय दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मेधावियों को मेडल प्रदान किए। डिग्री प्राप्त करना शैक्षिक जीवन का समापन नहीं बल्कि यह शुरुआत है। भारत के विकास में सहयोगी बनने की IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने मंच से 4 विश्वविद्यालयों टॉपर और 13 विभिन्न कॉलेजों के टॉपर सहित 17 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन द्वारा निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज, महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर हरि सिंह रावत को डायरेक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए छात्रों को संस्कारों का महत्व समझाया। उपराष्ट्रपति ने डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी विद्यार्थी अपनी शिक्षा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बनाएं और नवाचार स्टार्टअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगन जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने नए स्नातकों से कहा कि वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब तक हम सबको मिलकर भारत को विकसित बनाना है। देश को ग्लोबल लीडर के रूप में सामने लाने के लिए ईमानदारी, कार्य के प्रति समर्पण और सेवा भाव से काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा तैयार यह 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो 12 जिलों से होकर गुजरते हुए प्रदेश में कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन को भी नई रफ्तार देगा। मेरठ गंगा एक्सप्रेसवे के शुभारंभ पर मेरठ के बिजौली गांव में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पशुधन कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने भी प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण देगा। इस अवसर पर पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा,
2: मेरठ से प्रयागराज तक जो 600 किलोमीटर की दूरी है, जो 12 घंटे में पूरी होती थी वो 6 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 120 किलोमीटर की स्पीड से जिसमें निर्वाध गति से ये यात्रा पूरी होगी, तब लोग हवाई यात्रा की ओर कम मुखातिब होंगे, एक्सप्रेस वे से ज्यादा लाभ उठाएंगे।
1: मेरठ में जनगणना का पहला चरण

0: शुरू हो गया है। इसमें नागरिक अपना ब्योरा खुद दर्ज करा सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और इसमें बहुत कम समय लगता है। जनगणना की वेबसाइट पर जाकर निर्देशों का पालन करते हुए इसे आसानी से भरा जा सकता है। नागरिक 7 से 21 मई के बीच अपने मोबाइल या लैपटॉप पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया
1: आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, कपल कितने रहते हैं, फैमिली में कितने मेंबर हैं, रूम्स कितने हैं, ड्रिंकिंग वाटर की क्या सुविधा है, कुकिंग गैस आपके यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है, रेडियो टीवी ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, नेट की फैसिलिटी है कि नहीं। व्हाट्स पर एक ओटीपी आती है, ओटीपी को आपको फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद एक इम्यूनेशन आईडी जो है जनरेट हो जाती है। उस आईडी को आपको सुरक्षित रखना है ताकि जब 22 तारीख से जब हाउस टू हाउस हाउस लिस्टिंग का कार्य जो है मीटर के द्वारा किया जाएगा पैरनक के द्वारा, तो वो आईडी मांगने पर आपको देना है।
0: तकनीकी सहयोग जोहद शो इंडिया एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वधान में मेरठ मंडल के प्रथम नागरिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस लाइन में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा मॉडल टीकाकरण केंद्र एवं HPV वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन 14 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करेगी। उन्होंने कहा कि मेरठ में 10,000 से लगभग वैक्सीन आ चुकी हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि ये वैक्सीन अत्यंत प्रभावी है और बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, कि कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं है। सभी अभिभावकों से अपील की गई है कि अपनी बेटियों को यह वैक्सीन अवश्य लगाएं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त तत्वधान में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण अनंता का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति के सम्मान, प्रतिभा के उत्कृष्ट और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों एवं स्कूली छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
2: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
3: बाराबंकी के जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने विभागों और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही करने वाली कार्यदायी संस्थाओं और संबद्ध अधिकारियों को कमी पाए जाने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और उन्हें जन जन तक पहुँचाने को कहा है। स्थानीय रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में प्रशिक्षु आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण समापन के उपरांत दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत परेड समारोह मुख्य अतिथि अमिताभ यश अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था द्वारा सलामी लेने के पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कठिन प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए प्रशिक्षु आरक्षियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की गई तथा कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नागरिकों की सेवा करने, ईमानदारी और पेशेवर पुलिसिंग के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान, जनता से मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया, साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की शपथ दिलाई गई। दीक्षांत परेड में कुल 12 टोलियों के 293 प्रशिक्षु आरक्षियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी एवं खास सुरक्षा अधिकारियों की गठित टीम द्वारा गत दिनों जनपद के समस्त तहसीलों एवं नगर पालिका क्षेत्र में मीट के अवैध कारोबार को रोकने के लिए पुलिस बल के साथ संपूर्ण जनपद में गहन छापेमारी एवं निरीक्षण अभियान चलाया गया। निरीक्षण के दौरान अस्वस्थकर एवं अस्वच्छ कर स्थिति में खाद कारोबार करने वाले खाद कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी की गई व बिना लाइसेंस पंजी करण की व्यवसाय संचालन करने वाले 9 खाद कारोबारकर्ताओं के प्रतिष्ठान को मौके पर ही बंद करा दिया गया। वैशाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कटुआ धाम समर्थ साहेब जगजीवन दास बड़े बाबा में आयोजित मेले के दौरान जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा जन कल्याण एवं जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने साफ सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध एवं यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। 7 मई को राजस्व प्रशासन दिवस के रूप में सौगणना अभियान की शुरुआत की गई। जिला जनगणना अधिकारी अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह के अनुसार इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में अधिकतम से जन

0: सहभागिता सुनिश्चित कर जनपद बाराबंकी को सौगणना में अग्रणी बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने विगत दिनों जनपद का दौरा किया। उन्होंने सर्वप्रथम जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर ओपीडी कक्ष, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मरीजों से संवाद कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्था सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए कहा कि किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कक्ष सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अस्पताल के रसोई घर में पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। मंत्री श्री राही द्वारा नगर पालिका परिषद नवाबगंज में कल्याण मंडल के समीप पुनर्गठन पेयजल योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पानी की टंकी के कार्यों का स्थलीय अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यों को तीव्र गति एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिए। मंत्री ने इसी क्रम में जिला कारागार का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने के निर्देश दिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया और हिस्ट्री शीटर मिसबाहुर रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्ति कुर्क की। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गी ने बताया कि मिसबाहुर रहमान को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त विगत 25 वर्षों से मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त है। अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थों की निगरानी हेतु थाना जैतपुर में हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। साथ ही उसे जनपद स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत कार्यक्रम आबोहवा, विषय है समुद्र भी प्रदूषण की चपेट में। आलेख और वाचन है श्री अशोक गुप्त का।
1: विशालकाय समुद्र जैव विविधता का विशाल भंडार तो है ही, किंतु साथ ही खाद्य, ऊर्जा व खनिज पदार्थों का भी असीमित स्रोत है। समुद्र में इतनी प्रचुर मात्रा में लोहा, मैंगनीज, तांबा, निकल, कोबाल्ट, चांदी, सोना, प्लेटिनम व यूरेनियम इत्यादि है कि उनका इस्तेमाल कई शताब्दियों तक करने पर भी ये समाप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त समुद्र में पेट्रोलियम व गैस उत्पादों की तो असीमित मात्रा छुपी हुई है। मत्स्य उद्योग व सीपी उद्योग तो समुद्र पर ही निर्भर है। समुद्र में सूक्ष्मतम जीव जू प्लैंक्टोन व फाइटोप्लैंक्टोन से लेकर विशालकाय व्हेल तक निवास करते हैं। 100 से भी अधिक देशों की अर्थव्यवस्था समुद्र पर ही निर्भर है। समुद्र से हमें मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन जैसे खाद्य जीवों के अलावा गुआनो जैसे फास्फोरस युक्त उर्वरक भी प्राप्त होते हैं। समुद्र पृथ्वी के जलवायु का नियंत्रक और नियामक भी है। समुद्र हमें यात्रा एवं परिवहन हेतु मार्ग भी उपलब्ध करवाता है। इतना विशाल एवं महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी आज समुद्र बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण प्रदूषण की चपेट में आने से नहीं बच सका है और निरंतर प्रदूषण की गिरफ्त में आ रहा है। समुद्र प्राकृतिक रूप से भी प्रदूषित होता रहा है, क्योंकि यह सर्वविदित है कि सभी छोटे बड़े शहरों व महानगरों में स्थित नदियां अंततः समुद्र में ही मिलती है और अपने साथ लाए हुए प्रदूषित पदार्थों को समुद्र में समाहित कर देती है। समुद्र में ज्वालामुखी से निकले लावा, पेट्रोलियम कुओं से रिसने वाला तेल, पवन के माध्यम से आने वाला पीड़कनाशी एवं रेडियोएक्टिव पदार्थ, अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों से बने रेडियो आइसोटोप इत्यादि घटनाएं समुद्र को भी प्राकृतिक रूप से प्रदूषित करती है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव काफी कम होता है। किंतु वर्तमान में जिन मानव जनित कारणों से समुद्र अधिक प्रदूषित हो रहा है, उन कारणों में प्रमुख हैं घरेलू गंदगी व सीवेज का तथा औद्योगिक बहिस्रावों का नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचना, पीड़कनाशियों व कीटनाशियों में मौजूद अनअपघटनीय भारी धातुओं का समुद्र में प्रवेश, समुद्र में नाभिकीय विस्फोट करना तथा नाभिकीय कचरे को समुद्र में फेंकना, तेलवाहक जहाजों से तेल का रिसाव, तटवर्ती क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियां इत्यादि। अरब सागर, भूमध्य सागर व बंगाल की खाड़ी सर्वाधिक प्रदूषित समुद्र हैं। हमारे देश में मुंबई, कोलकाता

0: कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, तिरुअनंतपुरम, विशाखापट्टनम, गोवा इत्यादि बड़े शहर तथा द्वारिका, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम इत्यादि तीर्थस्थल समुद्र के किनारे ही स्थित हैं, जहाँ की मानवीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के कारण समुद्र धीरे धीरे कचराघर बनते जा रहे हैं। अकेले मुंबई शहर से प्रतिदिन 40 करोड़ लीटर घरेलू सीवेज तथा 20 करोड़ लीटर औद्योगिक बहिस्राव समुद्र में छोड़े जाते हैं। इस सीवेज में तथा बहिस्राव में मानव स्वास्थ्य के लिए तथा समुद्री जीवों के लिए हानिकारक करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। भारी धातु युक्त पीड़कनाशी व कीटनाशी खेतों व नदियों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाते हैं तथा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से एक छोटे से जीव से होते हुए बड़े जीवों में पहुंचकर जैविक आवर्धन प्रदर्शित करते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। सुदूर अंटार्कटिक महासागर में पेंगुइन के शरीर में डीडीटी का मिलना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। नाभिकीय विस्फोट व न्यूक्लियर फॉल आउट के अलावा रेडियो एक्टिव कचरे को समुद्र में फेंकना आम बात है, जिससे समुद्री जीवों व मनुष्य में कई आनुवंशिक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। रेड टाइड्स जैसी घटना के कारण समुद्र का पानी लाल हो रहा है तथा समुद्री वनस्पतियां व जीव विषैले व खाने के अयोग्य होते जा रहे हैं। समुद्र में पेट्रोलियम के रिसाव से समुद्री जल में ऑक्सीजन की भी कमी होती जा रही है और जल का BOD बढ़ रहा है। अभी भी समय रहते हम समुद्र को प्रदूषण की चपेट में आने से नहीं बचा पाए तो प्रकृति जो अपना विकराल रूप दिखाएगी उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था समुद्र भी प्रदूषण की चपेट में। आलेख और वाचन था श्री अशोक गुप्त का। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस बुधवार दिनांक 13 मई 2026 यानी आज दिन में 12 बजे से हमारे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप जनगणना 2027 के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उपनगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा बुधवार 13 मई 2026 यानी आज और समय होगा मध्याह्न 12 बजे का। सूचना समाप्त हुई। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति है सुरभि शर्मा की, संयोजन है ओपी सिंह का।
2: सुप्रभात, एक नई शुरुआत उमंग और उल्लास के साथ करते हैं एक नई शुरुआत एक नए दिन के साथ। श्रोताओं, 18 मई का दिन निश्चित है HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में। HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस उन सभी स्वयंसेवकों, समुदाय के सदस्यों, स्वास्थ्य पेशवरों और वैज्ञानिकों को सम्मानित करता है जो HIV को रोकने वाले वैक्सीन को विकसित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं या समुदायों को HIV निवारक वैक्सीन अनुसंधान के महत्व के बारे में शिक्षित करने का भी एक अवसर है। हर साल 18 मई को मनाए जाने वाला यह दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के 1997 के कथन की याद दिलाता है कि केवल एक वास्तव में प्रभावी निवारक HIV वैक्सीन ही एड्स के खतरे को सीमित कर सकती है और अंततः समाप्त कर सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH का HIV अनुसंधान कार्यक्रम, जिसका समन्वय NIH के एड्स अनुसंधान कार्यालय द्वारा किया जाता है, एक सुरक्षित और प्रभावी HIV वैक्सीन के विकसित करने के अनुसंधान को समर्थित करता है। NIH इस बात का भी अध्ययन

करता है कि HIV वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद लोगों को इसे लगवाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। शोधकर्ता एक सुरक्षित और प्रभावी HIV वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों में आशाजनक प्रगति कर रहे हैं। यही मानना है कि इस वैक्सीन का विकास किया जाए और इसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि एड्स जैसी भयानक बीमारी से लोगों को जागरूक किया जाए और उनका निवारण किया जाए।

0: श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि टीकाकरण एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम कई सारी बीमारियों का निराकरण करते हैं। क्या है टीकाकरण, किस प्रकार ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसी बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को। मेरा नाम डॉक्टर वंशराज सिंह है। मैं जनपद मथुरा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के पद पर तैनात हूँ और टीकाकरण कार्यक्रम को जनपद मथुरा में संचालित करने में अपना सहयोग प्रदान करूँगा।
0: सर, हमारा सवाल है कि टीकाकरण क्या है?
1: टीकाकरण एक तरह से टूल है जो हमारी कुछ बीमारियां हैं बच्चों में, वयस्कों में, उन बीमारियों से ना हो उसी से पूर्व उनको टीकाकरण का किया जाता है, जिससे कि उनको इन बीमारियों से बचाया जा सके। इन बीमारियों को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कहते हैं। 12 बीमारियां ऐसे चिन्हित हैं, उसमें से 11 के लिए हमारे यहाँ जनपद मथुरा में टीकाकरण की निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है।
0: टीकाकरण का महत्व क्या है?
1: टीकाकरण का महत्व यही है कि जो बीमारियां जिन बीमारियों से टीकाकरण से इम्यूनाइजेशन से बचा जा सकता है, फौरी तौर पर लीजिए कि मीजल्स जिसको कि खसरा कहा जाता है आम भाषा में, और एक दूसरी है बहुत महत्वपूर्ण डिप्थीरिया जिसे आम भाषा में गलघोंटू कहा जाता है। ये एक से दूसरे में फैलती हैं, अगर इनको

0: समय समय पर टीके लगे होते हैं, चाहे गर्भवती माताएं हों चाहे बच्चे हों, तो ये बीमारियां उन बच्चों को नहीं होती है। अगर हम खसरे की बात करें तो अगर बच्चे को MR की जो वैक्सीनेशन 9 माह पर लगती है, दूसरी वैक्सीनेशन 16 माह पर लगती है, अगर वो उसको दोनों डोज मिली है तो उसको मीजल्स या खसरे की संभावना नहीं होती है, ना ही उसको रूबेला मिलता है उस बच्चों को। अगर फर्ज कीजिए किसी बच्चे में ये टीके नहीं लगे हैं उसके, तो ये उनको बीमारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ये बीमारियां होती हैं तो कई सारी मॉर्बिडिटी और किसी कोशिश में मॉर्टिलिटीज भी, जहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जब बहुत ही अति गंभीर स्थिति बिगड़ जाती है, क्रिटिकल हो जाते हैं बच्चे, तो उनकी मृत्यु की संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। तो इसलिए टीकाकरण बेहद जरूरी है, और इसका महत्व है यही है कि यह बच्चों की जान बचाने में अपना रोल अदा करता है।
1: UIP भारत, इससे हमारा क्या अभिप्राय है?
0: UIP जो हमारा जो कार्यक्रम है, नेशनल रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसे शुरू में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से इसको शुरुआत की गई थी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में यह एक परिकल्पना की गई थी कि देश में, प्रदेश में, जनपद में और सभी पॉकेट्स में जो जो वैक्सीन अवेलेबल हैं उन वैक्सीन को लाभार्थी तक पहुंचाएं। समय समय पर इसमें और भी वैक्सीन, नई नई वैक्सीन जुड़ी हैं। शुरू में इसमें कुछ ही वैक्सीन थी, बाद में समय समय पर इसमें और भी वैक्सीन जुड़ी। इस प्रकार से हम 11 बीमारियों के बचाव के लिए जो है टीकाकरण की सुविधा देते हैं। यह बच्चों की एक उम्र के हिसाब से इसमें टीकाकरण की सुविधा है, जिससे कि उनको ऑप्टिमल इफेक्ट आए, जिससे कि उनको पूरी तरह से एक रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर डेवलप हो, और अगर वो इन बीमारियों वाले से एक्सपोज भी होते हैं तो उनको ये बीमारियां नहीं होती हैं, जो बहुत ही कम केसेस में बहुत माइल्ड हल्के तरह की ही बीमारियां हो पाती हैं। मैं शेड्यूल एक बार इनोवरेट करना चाहूंगा श्रोताओं के फायदे के लिए। तो गर्भावस्था में अगर पहली बार प्रेग्नेंट हैं या पूर्व में प्रेगनेंसी 2-3 साल से अधिक समय से रही है, तो उनको जैसे ही हमें पता चले गर्भावस्था की, उसमें TD का टीका लगता है और 28 दिन बच्चा TD का दूसरा टीका लगता है। 2 टीकों का प्रावधान है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म पर हेपेटाइटिस बी का टीका, जो पीलिया से बचाव के लिए होता है, OPV की 0 डोज, साथ में उसको BCG का टीका लग जाता है। BCG का टीका TB से बचाव के लिए रहता है, और OPV जैसा कि हम जानते ही हैं, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है जो आगे भी समय समय पर लगती है, और इससे जो पोलियो से बचाव मिलता है। इसी प्रकार से बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है, 1.5 माह पर, तो उनको ओरल पोलियो रोटा वायरस वैक्सीन जो 10 से बचाव करती है, साथ में IPV पेंटा वैक्सीन में 5 एंटीजन होते हैं, प्रमुखता उसमें डिप्थीरिया से बचाव के लिए है, पर्टुसिस के लिए है, जो हमने हेपेटाइटिस बी लगाई थी उस वक्त पैदाइश पे, उसी के ही इसमें एक एंटीजन उसका भी होता है, हिप का रहता है, साथ में जो एक और वैक्सीन है हमारे पास PCV और FIV, ये वैक्सीन हम देते हैं। यही वैक्सीन जब जो 6 सप्ताह पर देते हैं, यही 14 सप्ताह पर भी रिपीट होती है, लेकिन 10वें सप्ताह पर IPV और PCV की डोज नहीं दी जाती, उसमें 56 दिन का अंतर रहता है। तत्पश्चात 9 माह पर जो है मीजल्स रूबेला की प्रमुखता से वैक्सीन और अन्य वैक्सीन भी दी जाती है। तत्पश्चात बच्चा जब 16 माह का हो जाता है, उसमें DPT फर्स्ट बूस्टर, 5 वर्ष का DPT सेकंड बूस्टर, और TD का टीका 10 वर्ष की आयु में बच्चे को और 16 वर्ष की आयु में लगता है। इस तरह से ये सभी टीके जब लगते हैं तो ये एक जो है जीवन रक्षक कवच का काम करते हैं 11 VPD बीमारियों।
1: पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है?
0: जो इसमें अब हमारे पास में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिसे हम UWIN कहते हैं, UWIN पर यह देखा जा सकता है कि नजदीक में टीकाकरण की सुविधा कहाँ उपलब्ध है। 2 तरह से टीकाकरण की सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं, एक फिक्स सेशन, एक आउटरीच सेशन। फिक्स सेशन जो हमारे जिला अस्पताल में, UPSCs में और हमारी CSCs पर भी लगते हैं समय समय पर, वहाँ नियमित टीकाकरण रहता है, और वहाँ जैसे शहरी क्षेत्र में विशेषकर हमारे अर्बन PSCs पर जाकर के टीकाकरण की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। किंतु दूरस्थ क्षेत्रों के लिए हम आउटरीच सेशन समाज में ही, कम्युनिटी में ही जाकर हम सेशन आयोजित करते हैं, जिसमें हमारी

0: एएनएम सीकर का कार्य करती है, आशा और हमारा सहयोग जो है आईसीडीएस उसमें आंगनवाड़ी बहन जो तैनात होती है, ये मोबिलाइजर का काम करती है, बच्चों को घर से बुला करके और उनको पूर्व से सूचना रहती है। एक पूर्व निर्धारित माइक्रो प्लान के अनुसार पूरे माह में जगह जगह पर टीकरण की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, पंजीकरण की बात है, यूएन के माध्यम से कर सकती है। अगर कोई यूएन में दिक्कत आ रहा समझ में या कुछ है तो हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर, विशेषकर हमारी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं आशा दीदी या आंगनवाड़ी दीदी अथवा एएनएम दीदी से संपर्क करके और टीकरण की सुविधा का लाभ ले सकते।
1: क्या ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है या कोई फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें राशन कार्ड की कॉपी, अपने आधार कार्ड की कॉपी, ये सब चीजें लगानी पड़ती हैं? क्या है ये प्रक्रिया?
0: इसमें ये एक सबसे पहले बताऊं, बिल्कुल निशुल्क है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सभी वैक्सीन अच्छी खासी कीमत की होती है लेकिन सरकार के द्वारा लाभार्थियों के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। दूसरा, आपने जो बताया कि आधार कार्ड या राशन कार्ड, देखिए यूएन पर एक ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है, उसमें जो माता पिता है उनका रजिस्ट्रेशन, जैसे माँ जब गर्भावस्था में आती है तो उनका रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाता है, आधार के माध्यम से वैलिडेट हो जाता है। तत्पश्चात जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसमें उसका भी माँ से ही लिंक रहता है, लेकिन जो बच्चे बड़े हैं 5 वर्ष के, 10 वर्ष, 16 वर्ष के, तो उनका उन्हीं से ही ऑथेंटिकेट करके हम जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यूएन का। उसमें आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक थोड़ा हो जाता है। यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो ऐसा नहीं उसको टीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उसको भी टीकरण की सुविधा उपलब्ध है और अन्य दस्तावेजों का उसमें जिक्र किया गया है।
1: प्रमुख टीकाकरण कार्यक्रम कौन कौन से हैं?
0: जैसा कि मैंने अभी बताया, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, राष्ट्रीय नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, इसी के तहत ही टीकाकरण की सारे टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है, चाहे गर्भवती माताएं हों या बच्चे हों। अभी हाल फिलहाल में एक नई वैक्सीन भी भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है, इसे HPV वैक्सीन कहते हैं। यह वैक्सीन किशोरियों के लिए है, यह भी निःशुल्क है, जिसमें कि वो किशोरी जिसने 14 वर्ष की उम्र अपनी अचीव कर ली है, 14 वर्ष हो गई है, 14th बर्थडे मना लिया है लेकिन 15th बर्थडे मनाया नहीं है, 15 वर्ष की नहीं हुई है, उनको यह वैक्सीन दी जाएगी। यह वैक्सीन उनको भविष्य में जो सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है जो, उससे बचाव में मदद करेगी। इससे एक ही डोज लगनी है। यह वैक्सीन जो हमारी 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला महिला चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध है, हर दिवस में ये वैक्सीन लगाई जा रही है और यूएन पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने की अपेक्षा ये सुविधा ले सकते हैं जी।
1: इस वैक्सीन के प्रचार प्रसार को लेकर शासन प्रशासन द्वारा क्या उपाय अपने जा रहे हैं, क्योंकि ये नई वैक्सीन जो आई है, जो किशोरियां हो जाती हैं उनको कैसे जानकारी मिले, क्या स्कूलों में जाकर या घर घर जाकर इसके बारे में जानकारी दी जा रही है?
0: बिल्कुल, इसमें स्कूलों के माध्यम से, इसमें हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारे CSCs हैं, हम इन सबके माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसकी जानकारी मिले और ये जो है इस वैक्सीन को अधिक से अधिक बच्चियां लगवाएं, जिससे कि उनको भविष्य में इस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जिसमें जान जाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो उनसे बचाव मिलने में पूरी मदद मिलेगी।

अब डालते एक नजर आज के समाचारों पर। प्रकृति के बीच शनि धाम में मिलेगा शांति का अनुभव। शनि धाम जल्दी ही दर्शन के साथ साथ श्रद्धालुओं को प्रकृति के बीच अध्यात्म और शांति का अनुभव भी देगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहल पर शनि धाम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ वेटलैंड विकसित होने से भक्त पौराणिक वृक्षों की छाव में सुकून के पल बिता सकेंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ लक्ष्मी नागप्पन के निर्देश पर परिषद वन विभाग व विप्रा की संयुक्त टीम ने शनिधाम का दौरा किया। इस दौरान कार्यों की प्रगति देखी। यहाँ परिक्रमा मार्ग को आकर्षक बनाने के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं को रात्रि में परेशानी ना हो। 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विशाल वेटलैंड विकसित कराया जा रहा है। वन विभाग द्वारा लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में कृष्णकालीन पौराणिक वन तैयार कर उन वृक्षों को लगाया जाएगा, जिनका उल्लेख श्री कृष्ण लीला और ब्रज संस्कृति में मिलता है। यहां टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसका निर्माण धर्मार्थ विभाग द्वारा राजकीय निर्माण निगम से कराया जाएगा। निरीक्षण टीम में पर्यावरण सलाहकार मुकेश शर्मा, उप विभागीय वन अधिकारी सुशील कुमार सिंह और सहायक अभियंता सुमित आजी मौजूद रहे। धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन ने खास तैयारी की है। स्टेशन पर भीड़ अधिक न हो इसके लिए जंक्शन के तीसरे प्रवेश द्वार पर होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया है। 1500 से लेकर 1500 वर्ग फीट के दो होल्डिंग एरिया बनाने को हरी झंडी दी गई है। जनपद में मेले और त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण को लेकर रेलवे जंक्शन के तीसरे प्रवेश द्वार पर दो होल्डिंग एरिया बनाने जा रहा है। ये होल्डिंग एरिया प्रयागराज जंक्शन के सामने खुसरो बाग में महाकुंभ की तर्ज पर तैयार किए जाएंगे। यहाँ यात्रियों को रोका जाएगा, भीड़ नियंत्रित होने के बाद ही उन्हें प्लेटफार्म की ओर भेजा जाएगा, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी की स्थिति न बने। मंडल में आगरा में एक और मथुरा में दो होल्डिंग एरिया बनाए जाने से हरी झंडी मिल गई है। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि जनपद में त्योहारों एवं प्रमुख अवसरों पर होल्डिंग एरिया में यात्रियों को रोका जा सकेगा, इसके बाद ही उन्हें प्लेटफार्म पर भेजा जाएगा। व्यवस्थाओं में सुधार की मुहिम रंग लाई है।

इसी माह 17 तारीख से होने वाले पुरुषोत्तम मास के पहले स्थानीय प्रशासन के निर्देश में कार्यदायी संस्था जल ब्रज ने कच्चे परिक्रमा मार्ग की दशा सुधारने का कार्य शुरू कर दिया है। मंगलवार को कच्चे परिक्रमा मार्ग पर होते हो रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। मार्ग से कंक्रीट हटाकर बालू बिछाई जाएगी। परिक्रमार्थियों को गंदगी का सामना न करना पड़े इसके लिए 20 सफाई कर्मी और बढ़ाए जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में सुविधाएं बढ़ने के साथ भक्त राधे राधे के जय घोष के साथ निर्विघ्न परिक्रमा लगा सकेंगे। पुरुषोत्तम मास में देश विदेश से लाखों भक्त नगर की पंचकोसी व ब्रज 84 कोसी की परिक्रमा करेंगे। मंदिरों एवं आश्रमों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। जगह जगह भंडारे और प्याऊ लगाए जाएंगे। अधिक मास में ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बलदेव में समाजवादी विश्राम स्थल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह पेयजल जल सेवा भोजन प्रसाद भी उपलब्ध कराया जाएगा। राधा श्याम नाम से गूंजेगा ब्रज 84 कोस। इस बार अधिक मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। देश विदेश से लाखों लोग ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने के लिए आएंगे। मान्यता है कि अधिक मास के दौरान ब्रज के सभी देवी देवता यहां पधारते हैं, यहीं पर वास करते हैं। ऐसे में अधिक मास के दौरान ब्रज मंडल राधा श्याम नाम से गुंजायमान होगा। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 3 प्रदेशों में होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से होकर होने वाली 84 कोस को परिक्रमा कुल 252 किलोमीटर की है। 20 उपवन, 361 वन और 1300 गांव और नगरों में होकर निकलती है। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के माता पिता सभी तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा जताई थी। इसी पर श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों का आह्वान कर इन्हें ब्रज में बुलाया था। यह सभी तीर्थ ब्रज 84 कोस के दायरे में विराजमान है। साथ में 84 कोस में ठाकुर जी के दर्शन और विभिन्न लीलाओं के स्थल भी मौजूद हैं। परिक्रमा में 124 पड़ाव जिनमें से मधुबन, तालवन, शांतनुकुट, बहुलावन, राधा श्याम कुंड, ललिता कुंड, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, जतिपुरा, पूंछरी, डी, कंबन, बरसाना, नंदगांव, कोकिलावन, कोटवन, पैगाम, शेरगढ़, वृंदावन, महावन, लोहवन, दाऊजी, गोकुल, मथुरा के अलावा राजस्थान के कुछ और हरियाणा के कुछ हिस्से भी आते हैं। अब डालते एक नजर आज की ऐतिहासिक घटनाओं पर, क्योंकि हर दिन अपने आप में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटनाएं समेटे रहता है। आज ही के दिन 1863 में रॉबर्ट बूसरूट ने तमिलनाडु के पलरम से लेटराइट ड्रेवल निर्मित प्रथम पूर्णकालीन उपकरण प्राप्त किया था। 1643 में चिली में भयंकर भूकंप आया था जिससे सेंटियागो की तिहाई आबादी खत्म हो गई थी। 1648 में दिल्ली के लाल किले का निर्माण पूरा हुआ। 1905 में फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति बने थे। वहीं 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। 1978 में देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था। वहीं 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण किए। ये थी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो आज के दिन के साथ जुड़ी हुई थी। श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर में आकाशवाणी ने नित्य नए आयाम स्थापित किए हैं। आकाशवाणी में हवा महल कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 1997 को विविध भारती पर हुई। यह कार्यक्रम 15 मिनट के हल्के फुल्के रेडियो नाटकों और स्क्रिप्ट्स पर आधारित था। इसमें भारतीय लोक कथाओं, सामाजिक विषयों और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को नाटकीय रोचक अंदाज में प्रस्तुत किया जाता था। वहीं 1970-1980 के दशक में अपनी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचे इस कार्यक्रम का 25 अक्टूबर 1972 को 1000वां एपिसोड प्रसारित हुआ था। हवा महल कार्यक्रम भारतीय रेडियो के स्वर्णिम दौर का एक उदाहरण था। आज 13 मई है। 13 मई को फखरुद्दीन अली अहमद, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, उनका जन्म हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति बने रहे। उनका जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या करें क्या ना करें के अंतर्गत हम बातचीत करते उन विषयों के बारे में जो होते हैं आम बन जाते हैं खास। हर व्यक्ति देशभक्त है, लेकिन वो अपनी देशभक्ति कैसे प्रदर्शित करे? जरूरी नहीं कि हर कोई सेना में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अगर हम अपने कार्य क्षेत्र को पूर्ण निष्ठा से निभाएं, फखरुद्दीन अली अहमद का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को अपना कर्म बनाया। उन्होंने पूरे मनोयोग से हर कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त करी, विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करी, फिर भी अपने देश में आकर अपनी माटी से जुड़कर अपने देश को आज़ाद कराया और बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश की सेवा करी। उन्होंने अपने जीवन को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जो भी कार्य किया पूरे मन से किया, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना हो या फिर राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर।

उनका आसीन होना हो। उनका यह मानना था सबको शिक्षित होना चाहिए क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से टाल सकते हैं। युवाओं को अपनी देशभक्ति दिखाने का, जताने का मौका निरंतर मिलता है तब जब वो देश के लिए अपनी भावना को समझे, अपने कर्तव्य का बोध हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो अपने देश की सेवा करे। वो जहाँ हैं, जिस जगह हैं, जिस नौकरी पर हैं, जो कर रहे हैं, उसी काम को मनोयोग से, पूरी निष्ठा से करें, कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, पूरे मन से अपने कार्य को करें और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। श्रोताओं, हम सब अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं तब जब अपने कर्तव्य का पालन करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, सदा साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। इसी के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति थी सुरभि शर्मा की, संयोजन था ओपी सिंह का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम सुनने से पहले एक सूचना श्रोताओं, इस बुधवार दिनांक 13 मई 2026 यानी कि आज दिन में 12 बजे से हमारे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप जनगणना 2027 के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उप नगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा की जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा बुधवार 13 मई यानी कि आज, समय मध्याह्न 12 बजे। सूचना समाप्त हुई और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन

0: दिन कब आते हैं?
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नौ तपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
1: जी
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है? खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है? आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं? ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है।

0: चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ
0: चलो
1: पे पानी होगा।
0: चलते
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
1: दीदी।
3: कौन है?
1: दीदी।
0: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
1: नहीं।
4: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब
2: गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
2: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
2: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
3: आइसक्रीम।
1: बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, गर्मी अम्मा। हाँ? आप बहुत अच्छी हैं।
1: हाँ, तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
8: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
9: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
7: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो। ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
4: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
4: क्या सूचना?
5: साहब दुश्मनों के बारे में।
4: अच्छा यहीं रुको, चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: शब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: शायद पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया

0: कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
1: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
0: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी,
5: यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
5: उधर से। हाँ।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
3: अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
5: धीमे बोलो, धीमे।
3: जी,
5: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
5: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
3: जी।
5: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
5: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
3: जी सर।
5: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
3: जी सर।
5: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी चाहिए।
3: धीरे।

0: Ava's name. Ava's name. Har koi apni position le le.
1: Yes, sir.
0: Everybody ready?
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Ab hath khola bhi ko.
2: Good. वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, इस बुधवार दिनांक 13 मई 2026 यानी आज दिन में 12 बजे से हमारे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप जनगणना 2027 के संदर्भ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उपनगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा बुधवार 13 मई यानी कि आज, समय मध्याह्न 12 बजे। फोन नंबर आप एक बार फिर से नोट कर लें, 2530135 और व्हाट्सएप नंबर है 9412225575। सूचना समाप्त हुई।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को हंसते जख्म फिल्म के लिए। गीत को लिखा था कैफी आजमी ने। और आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत काजल फिल्म से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

साहिर लुधियानवी की लिखी इस गीत को स्वरबद्ध किया था रवि ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म से, गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाइड फिल्म का ये गीत। लिखा था शैलेंद्र ने, धुन बनाई थी एचडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं हेमलता और शैलेंद्र की आवाज़ में, आँखियों के झरोखे फिल्म से। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अखियों के झरोखों से। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, आवाज़ें थीं हेमलता और शैलेंद्र की, गीत संगीत था रविंद्र जैन का। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कटे पतंग फिल्म से, गाया है किशोर कुमार ने, गीत रचना है आनंद बख्शी की और संगीत रचना है आर डी बर्मन की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। बुधवार दिनांक 13 मई यानी कि आज दिन में 12 बजे से हमारे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप जनगणना 2027 के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उपनगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा बुधवार 13 मई यानी कि आज। समय होगा मध्याह्न 12 बजे।

0: सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। दिन के 11 बज चुके हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुत कर रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: नमस्कार।
0: आदरणीय सारस्वत साहब को मेरा स्वयंवरा नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं सर?
0: मैं सर आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र यादराम बोल रहा हूँ, गांव उस पार से। सर
1: आपका स्वागत करते हैं यादराम जी कार्यक्रम में।
0: और सर आप कैसे हो? आकाशवाणी टीम कैसी है सर हमारी?
1: बस सब लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की दुआएं हैं।
0: चलो साहब, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप ही स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान की कृपा हमारे ऊपर आप ऊपर ऐसी बनी रहे सर।
1: जी जी जी बिल्कुल। आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में सर, बताइए।
0: हमारी फरमाइश रहेगी चिंगारी फिल्म की, गाने के बोल है मेरी बारी रे, काहे को भूले बनवारी, जब जब वीर परी भक्तन पे तुमने विपता तारी रे, मेरी बारी रे काहे को भूले बनवारी।
1: आपकी पसंद का ये गीत आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार साहब, मेरा कॉल उठाने के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
1: राधे राधे।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ नमस्कार जी,
0: नमस्कार,
1: मैं जवाहर सिंह गांव सैफपुर तहसील नंदोई जिला भरतपुर राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक
0: क्या हाल है जवाहर सिंह जी? स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: है, बढ़िया हाल है साहब। गर्मी सता रही है,
0: बीच में तो आपने फोन करना काफी कम कर दिया।
1: ऐसे ये सब बिजी रहती है थोड़े। हाँ
0: अच्छा, सब ठीक तो चल रहा है सर?
1: हाँ सब ठीक चल रहा है साहब। आपकी कामना करते हैं ठीक रहने की।
0: जी, स्वस्थ बने रहिए, हमारी यही कामना है। आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी?
1: आई मिलन की वेला का गीत सुनवा दें आप,
0: कौन सा
1: टाइटल सॉन्ग।
0: सुनवाते हैं जवाहर सिंह जी, आपकी पसंद का ये गीत? बहुत
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते साहब जी। नमस्ते, आपको हमारा सादर प्रणाम।
1: कौन बोल रहे हैं आप सर?
0: जी सर, हम महाराष्ट्र के यवतमाल विदर्भ से संतोष खड़से बोल रहे हैं।
1: खड़से साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
0: जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर जी। आप कैसे हैं सर जी?
1: हम अच्छे हैं, आप बताइए, आपके हालचाल क्या हैं?
0: जी हम भी सर कुशल है। आप सबकी आशीर्वाद शुभकामनाएं हमारे साथ है और मथुरा आकाशवाणी वृंदावन से हम लगातार जुड़े हुए हैं, आपके कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं।
1: बड़ा अच्छा लगा सर ये सुन के, आप कार्यक्रम लगातार सुनते हैं हमारे।
0: हाँ जी हाँ जी, आपके अधिकतर कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता भी रहती है, आप हमें शामिल कर लेते हैं
1: जी।
0: कार्यक्रम की रोचकता बढ़ जाती है सर।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। आज क्या फरमाइश रहेगी सर कार्यक्रम में, बताइए।
0: मनहर उदास और साधना सरगम, किसी को नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में, जाबाज फिल्म का।
1: ठीक है संतोष भाई, आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका।
0: जी सर, जरूर जी। नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सारस्वत जी।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप सर?
0: आपका नियमित श्रोता डॉक्टर सुरेश जाधव, नेहरू चौक पैठन, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
1: डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
0: मैं मजे में हूँ सर जी, आप कैसे हो?
1: बहुत अच्छे हैं सर, आशीर्वाद है बड़ों का, प्रभु की
0: क्या
1: कृपा
0: बात
1: है।
0: है, क्या बात है, क्या बात है, रहना ही चाहिए।

0: और सदा हंसते खेलते मुस्कुराते रहना चाहिए।
1: जी सर बिल्कुल,
0: जिंदगी हसीन हो जाती है और आपसे बात करते हुए इतना खुशी होती है। हमारे SMS आप पढ़ते हैं, हमारे गीत बजाते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: अरे सर आप ही लोगों के लिए तो सारे कार्यक्रम होते हैं हमारे।
0: अरे क्या बात है, होते थे ना, सब श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बनाते हैं आप, और आप इतने लगन और उत्साह से कार्यक्रम पेश करते हैं।
1: जी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आज क्या फरमाइश रहेगी सर कार्यक्रम में?
0: आज की फरमाइश है देखो, फिल्म का नाम है होटल और गीत के बोले प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना, दो आँखें तो क्या दो जहाँ भी समाए न दिखना। मनहर उदास और आशफ जी ने गाए हुआ गीत है। मेरे साथ में मेरी मिसेज भी सुनेंगे अनिता जाधव, और लड़का है हमारा प्रसाद जाधव ये भी सुनेंगे, और सारस्वत जी आप भी इस गीत का आनंद उठाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके फरमाइश का गाना सुनते हैं हम सब लोग।
0: जी जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
0: शुक्रिया।

0: हेलो
1: जी आदरणीय सारस्वत जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
1: मैं आपका नियमित ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम नगला राणा सूरा मथुरा से बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है चौधरी साहब कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद सर। और सर कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं सर, आप लोगों की दुआएं हैं।
1: जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्वस्थ रहें।
0: आप बताइए सर, आपके यहाँ क्या हाल चाल है? परिवार में सब लोग अच्छे हैं?
1: हाँ सर, सभी लोग कुशल मंगल है, आप लोगों की दुआएं हैं।
0: कार्यक्रम सुन रहे हैं लगातार?
1: जी बराबर, कार्यक्रम में शामिल हो या न हो लेकिन सुन जरूर रहे हैं।
0: जी अच्छी बात है, औरों को भी मौका देते हैं, ये और भी अच्छी बात है सर।
1: महोदय हमारे बहुत सारे श्रोता अक्सर कहते हैं कि भाई कम से कम एक हफ्ते का गैप ले लेना चाहिए
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: ताकि अन्य श्रोताओं को भी मौका मिले।
0: हाँ थोड़ा अवसर मिल पाए, बिल्कुल ठीक बात है। आज क्या फरमाइश रहेगी चौधरी साहब कार्यक्रम में?
1: सर स्वर कोकिला लता जी का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म बड़ी बहन से। गाने के बोल हैं, चले जाना नहीं नैने मिला के हाय सैया बेदर।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं चौधरी साहब आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए सर।
1: महोदय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कॉल शामिल करने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

था रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म दिल परदेसी हो गया से। इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। शब्द रचना सावन कुमार की है, संगीत उषा खन्ना का है।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था चुपके चुपके। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत दिया था SD वर्मन ने। लीजिए आइए सुनते हैं फिल्म अनजाना का ये गाना। स्वर मोहम्मद रफी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सफर।
1: किशोर कुमार और राजेश खन्ना की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना, फिल्म का नाम था अंदाज। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म अनजाना का ये गाना, और इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, आज बुधवार दिनांक 13 मई को अब से कुछ ही देर में यानी कि 12 बजे से आप हमारे विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम में जनगणना 2027 के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध रहेंगे श्री राकेश कुमार त्यागी, उप नगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी, और इनसे भेंट करेंगे ओपी सिंह। श्रोताओं, आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।

श्रोताओं, स्वागत आपका अपने कार्यक्रम जिसका आज विषय रखा है हमने जनगणना 2027, एक विशेष कार्यक्रम। इसके क्या उद्देश्य हैं, कैसे क्रियान्वित होगी और इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, इस कार्यक्रम का

0: उद्देश्य क्या है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो जनगणना है जो हर 10 साल बाद होती थी, किन्हीं कारणों से, कोरोना आया तो कुछ ये विलंब से हो रही है, लेकिन 2027 में ये जाके पूर्ण होगी। इस पर बहुत सारी आपकी प्रश्न होंगे, कुछ जिज्ञासाएं होंगी, कुछ जानकारियां आप चाहते होंगे, तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं श्री राकेश कुमार त्यागी साहब। आप वरिष्ठ PCS अधिकारी हैं, सहायक नगर आयुक्त हैं मथुरा नगर निगम के, और नोडल अधिकारी हैं नगर निगम क्षेत्र में हो रही इस जनगणना 2027 के। तो जब तक आप हमसे जुड़ें, दो टेलीफोन लाइनें हमारी खुली हुई हैं, 2530-135, मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगा लेंगे, ये हमारा बेसिक नंबर है। व्हाट्सएप नंबर भी है 94-122-25-575, इस पर भी आप अपनी क्वेरीज, अपने प्रश्न, और इस कार्यक्रम में जो भी आप शामिल होकर के हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी जानकारी चाहते हैं, वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सर, श्रोता हमसे जुड़े, उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी मथुरा के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जी, तो ये जो कार्यक्रम हम जनगणना 2027 करने जा रहे हैं, और डिजिटली ये पहली बार हो रहा है, और ये काम लगभग शुरू भी हो चुका है कि सेल्फ नॉमिनेशन करके व्यक्ति कर सकता है। तो यहीं से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के पूरी उसके पीछे का जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उसके कुछ उद्देश्यों पर आप प्रकाश डालें, और एक व्यक्ति को पहली बार डिजिटली जोड़ा गया है तो कैसे इसमें अपनी सहभागिता निभा सकता है, कैसे जुड़ सकता है, इस पर भी थोड़ा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिसकी जनगणना जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और हमारी जनगणना के जो कार्य को दुनिया में
0: जी
1: एक बहुत बड़े प्रशासनिक कार्यों में से एक माना जाता है। इलेक्शन के कार्य रहते हैं, लेकिन जनगणना का भी कार्य जो प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात होता है, ये 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई थी, और ये जो अब हो रही है जनगणना 2027, ये 16वीं है, और आज़ादी के पश्चात ये 8वीं है, और इससे पहले 2011 में हुई थी, 2011 के पश्चात 10 वर्ष पश्चात 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की
0: कोरोना।
1: वजह से वो नहीं हो पाई थी। अब ये 2027 में हो रही है। जनगणना का इसलिए बहुत महत्व है कि ये हमारी बहुत विश्वसनीय मानी जाती है। इसके जो आंकड़े हैं, चाहे मनुष्यों से संबंधित हैं, प्रत्येक मनुष्य की इसमें गणना होती है, साथ साथ जो उनकी स्थिति है, सामाजिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, उनके मकानों में क्या स्थिति है, उन सब के जो आंकड़े हैं वो हमारे देश के योजनाकारों को हमारे जो प्लानिंग होती है उसके लिए कहाँ कहाँ किस प्रकार हमको आगे प्लानिंग करनी है,
0: जी जी
1: शौचालयों की क्या स्थिति है, पानी पीने की क्या सप्लाई की स्थिति है, जो नालियों की स्थिति है वो क्या है, इस या जो शैक्षिक स्थिति है वो क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, बच्चों की स्थिति क्या है, बूढ़ों की स्थिति क्या है, इतने अच्छे आंकड़े इससे प्राप्त होते हैं। तो चाहे वो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे प्राइवेट संस्था हैं, सबको इनके आंकड़े की बहुत अच्छी आवश्यकता रहती है।
0: जरूरत है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो लक्ष्य रखा है कि 2047 जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ बनाए, और जब हम एक विकसित राष्ट्र के तौर पे देखे जाएं, समझे जाएं, जाने जाएं या माने जाएं, तो उसमें इन छोटी छोटी चीज़ों का भी बड़ा योगदान होगा।
1: बिल्कुल, इनका योगदान ये है कि एक तरह से ये गणना है, जनगणना, तो इसमें जो गणना होती है उसके आंकड़ों का बहुत महत्व है, और हमारी जो जनगणना है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी, उसके आंकड़े बड़े विश्वसनीय माने जाते हैं। इस बार ये थोड़ा सा हुआ है कि डिजिटली ये जनगणना होगी, और इसमें जैसे प्रत्येक एरिया है, एक जोन बनाए गए हैं, एक उसके चार्ज अधिकारी होते हैं, उसमें ब्लॉक बनाए गए हैं, वो तो जो एक ब्लॉक बनाए गए हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक हैं, मकान सूचीकरण ब्लॉक, तो वो लगभग 150 से 190 के लगभग उसमें मकान रखे गए हैं।
0: सर, इस बीच में कुछ श्रोता हमसे जुड़ने लगे हैं, आप कहें तो एक प्रश्न ले
1: बिल्कुल
0: लेते हैं। जी जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल।
0: जी हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार सर, शुभ नाम बताइए अपना।
2: नमस्कार सर, मैं औरंगाबाद मथुरा मोहम्मद सलीम बोल रहा हूँ।
0: मोहम्मद सलीम जी, बताइए भैया क्या प्रश्न है आपका।
2: पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार, वरिष्ठ अधिकारियों को नमस्कार।
0: जी
1: नमस्कार,
0: जी
1: नमस्कार।
2: और मैं सर ये जानना चाहता हूँ, जैसे मेरी वाइफ के नाम रजिस्ट्री है,
0: हम्म,

0: और मेरे दो बेटे हैं, और दोनों बेटों के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं। तो ये जो जनगणना के जो विषय में जो आप बता रहे हैं, अगर मैं ये डिजिटल कराता हूँ, ऑनलाइन कराता हूँ, और दोनों बेटे मेरे शादीशुदा हैं,
1: जी जी,
0: तो ये अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे ये एक
1: नहीं? बिल्कुल, मैं
2: बता रहे
1: मैं इसका आपको बताना चाहता हूँ। जनगणना वास्तव में मकानों की गणना है, मनुष्यों की गणना है, इसमें उसके स्वामित्व का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे कोई भी आदमी अपने मकान में भी रह सकता है, किराए के में भी रह सकता है, कैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन उसकी मकानों की हमको गणना करनी होती है, और मकान में जो भी निवास कर रहे हैं मनुष्य, उनकी गणना करनी होती है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, जो भी स्थिति है। तो एक परिवार की का एक माना जाता है, और परिवार का मतलब है एक किचन, एक रसोई, जिसमें जो परिवार के लोग खाना खाते हैं। तो अगर एक से अधिक रसोई है तो दो परिवार माने जाते हैं।
2: जी जी, अब जैसे इन्होंने कहा कि इनके दो बेटे हैं और दोनों अलग रह रहे हैं।
1: दोनों बेटे अलग अलग रहते हैं, उनकी अलग अलग होगी जनगणना। जो प्रगणक हैं वो 22 मई से आपके यहाँ पे आएंगे, और वो आपको बताएंगे। उसमें 33 प्रश्न हैं, 33 प्रश्न वो पूछेंगे।
0: अगर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे मैं ये ऑनलाइन कराता हूँ,
1: ये ऑनलाइन ही होगी, जो मोबाइल ऐप में वो भरा जाएगा, वो आपको दिखाएंगे जो आएंगे प्रगणक, और आपसे प्रश्न।
2: ये सर शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मैं स्वयं कर देता हूँ,
1: अगर आप सेल्फ एनुमेरेशन करना चाहते हैं, स्वयं गणना करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। उसमें मैं आपको
0: एक प्रश्न और है, माफ करना।
2: जी जी,
0: जैसे मेरा मकान 103 वर्ग फुट में है, और मैं दोनों बेटे को अलग अलग कर चुका हूँ, उनको प्रधानमंत्री योजना से बने हुए हैं, तो फिर क्या मुझे क्या प्रूफ देना पड़ेगा?
1: नहीं नहीं, आपको देखिए, इसमें किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी,
1: क्योंकि ये सिर्फ काउंटिंग है, गणना है, मकानों की स्थिति क्या है, ये उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं।
0: जी,
1: तो उसमें कोई आपको प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, ना उसमें आपका स्वामित्व पूछा जाता है, मालिकाना हक पूछा जाता है, किसका है, कैसा है, वो नहीं पूछा जाता। उसमें बस ये पूछा जाता है कि मकान की छत कैसी बनी है, पक्की है, कच्ची है, फर्श कैसा है, फर्श ईंटों का है, कच्चा है, मार्बल का है, और पानी की सप्लाई है, बिजली, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
2: इसमें सर, अब जैसे बहुत से लोग किरायों पर रह रहे हैं,
1: जी,
2: या जैसे बहुत सारे सर्विस पे हैं, उनका रहने वाले, मान लो कोई मथुरा का बासिंदा है, दिल्ली की सर्विस कर रहा है, या कोई दिल्ली का रहने वाला है, कहीं लखनऊ में काम कर रहा है, तो वहाँ जो किराए पे रह रहा है, तो वो वहाँ रह के कराएगा उसको, या यहाँ पे कराएगा?
1: नहीं, बिल्कुल, इसमें ये है कि ये गणना है, तो जो व्यक्ति जहाँ पे रहता है, जहाँ पे निवास करता है, और निवास का मतलब माना जाता है कि जहाँ पे रात्रि विश्राम करता है, तो जैसे यहाँ पे रहता है, ठीक है, लेकिन सर्विस करने किसी दूसरे शहर में जाता है, तो उसका निवास यही माना जाएगा, मथुरा में माना जाएगा,
2: मथुरा में माना जाएगा,
1: तो वो किराए पे भी हो सकता है।
2: हाँ।
1: अपना मकान
2: तो
1: भी हो
2: एक तरह से जैसे SIR में हुआ था कि जिसका जहां बोट है उसको वहां उसकी काउंटिंग करानी है, वहां उसका वो कराना है वेरिफिकेशन, इसी तरीके से जहां का निवासी है वहां उसको जनगणना करानी है उसको।
1: बिल्कुल
2: जी,
1: जनगणना का जो ये प्रथम चरण स्टार्ट हो रहा है, ये 7 मई से स्टार्ट हो चुका है, 7 मई से 21 मई 2026 तक ये स्वगणना का ये
2: जी,
1: समय
2: जी,
1: है 15 दिन का। तो स्वगणना में ये पहली बार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान की गणना स्वयं जो है उसकी सूचना अपने मोबाइल में फीड कर सकता है।
2: जी,
1: तो इसका ऐप है, क्योंकि जो हमारे प्रगणक होंगे, एनुमेरेटर होंगे, वो अपने मोबाइल से करेंगे, और जो व्यक्ति स्वयं अपने मकान की गणना स्वयं करना चाहता है वो अपने मोबाइल से करेगा।
2: जी, तो एक तरह से जो प्रगणक है उनका काम आसान कर जाए।
1: हाँ, ये जो है पेपर विहीन,
2: जी,
1: कागज विहीन ये एक जनगणना है,
2: एक्सरसाइज,
1: और ये पर्यावरण फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि
2: कागज नहीं लगाना,
1: जैसे 2000 की जनगणना हुई थी उसमें बहुत ज्यादा कागज, अब सब कुछ ऐप पे है, मोबाइल पे है, इसका ऐप है, आपको अगर करना है तो आप उसमें खोलेंगे, मैं उसकी जो
2: ऐप अगर बताना चाहें आप।
1: बिल्कुल, ये मैं बता देता हूँ, ये SESE.census.CEN.SUS.ORG

0: www.gov.in, यानी कि आप गूगल पे जाके अगर SE लिखेंगे, SE का मतलब है सेल्फ एनुमेरेशन, तो ये उसके लिए है जो जिसको स्वयं अपने मकान की जो है गणना करके उसको फीड करना है अपने ऐप पे। तो गूगल पे आप लिखेंगे SE तो तुरंत उसमें आ जाता है se.census.org.gov.in, वो अपने आप आ जाएगा। उसको आप टच करेंगे, टच करके उसमें जो है वो ऐप ओपन हो जाता है और उसमें सबसे पहले जो प्रदेश का नाम पूछता है, आप उसमें उत्तर प्रदेश जो है उसमें सब कुछ सूची आती है, आपको टाइप जो है बहुत कम करना है, जैसे अपना नाम आपको टाइप करना है, मोबाइल नंबर आपको उसमें टाइप करना है, अपना ईमेल नंबर डालना है, तो ये चीजें तो ऐसी हैं जो आपको टाइप करनी है, लेकिन बाकी जितने प्रश्न हैं उनके ऑप्शन आते हैं
1: जी।
0: जैसे मकान के संबंध में आएगा कि मकान का क्या उपयोग है, जैसे मकान आवासीय भी हो सकता है, कॉमर्शियल हो सकता है, कोई शैक्षिक संस्थान हो सकता है, संस्थागत हो सकता है, ऐसी मकान कच्चा है पक्का है, उसकी छत कैसी है, तो उसमें ऑप्शन आएंगे।
1: मतलब जो 33 प्रश्नों की संख्या है जो मैं देख पा रहा हूँ, उसमें घर का टाइप है, घर की स्थिति है, परिवार में रहने वाले लोगों के क्या किन किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उसमें किस तरह का स्टेटस है, तो इन सब चीजों से एक व्यक्ति का रहन सहन, उसके जीवन स्तर और जो चीजें जिनसे हम आगे की भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: वो सब इसके पीछे का उद्देश्य।
0: इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं ये केवल आंकड़ों के लिए हैं, इनका कहीं वैसा उपयोग नहीं है कि कहीं पे इनका उपयोग किसी भी प्रकार से दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में किया जा सके।
1: जी जी।
0: इसका जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी इस चीज को स्पष्ट किया गया है और ना ही इसमें कोई आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना,
1: मतलब आपकी जो व्यक्तिगत जानकारी है वो व्यक्तिगत रहेगी, आपके लिए रहेगी, उसको कोई वो गोपनीय है,
0: वो गोपनीय
1: उस डाटा का कोई पर्सनल यूज नहीं कर पाएगा,
0: बिल्कुल कोई उसका पर्सनल यूज नहीं कर पाएगा, कहीं पर्सनल क्या उसका कहीं भी किस तरह से ऐसे इस्तेमाल नहीं होगा रूप में, उसके केवल सरकारी आंकड़े हैं, सरकार की योजनाएं बनाने के लिए और जो संस्थाएं हैं उनको उसका इस्तेमाल होता है। इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूं
1: सर, एक श्रोता जोड़ने पहले उनसे ले लेते हैं। जी जी जी, जी। हेलो,
2: राधे राधे सर।
1: राधे राधे भैया, नाम बताओ।
2: बाबू जी, मैं जी बोल रहा हूँ, मैं तो हवाला आपको रेडियो से लो, तो रेडियो कोई काम करतू।
1: हाँ,
2: क्या कहते हैं, मुंह अब जनगणना है, मोबाइल मोबाइल बनाने, हमें तो कीपैड है, हमें तो खरीदना है, वो
0: नहीं तो ऐसा है भैया।
1: कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
2: हवा तो BSNL बोल रहे हैं।
1: कहाँ से?
0: ठीक है भैया, इसमें ऐसा है कि आपको स्वयं नहीं करना है, अगर आपका कीपैड वाला है तो उस पे नहीं हो पाएगा। 22 मई से 20 जून के बीच में जो हमारा प्रगणक है वो आएंगे आपके पास में, घर घर वो जाएंगे और आपसे पूछेंगे और अपने मोबाइल पे उसको फीड करेंगे। इसमें एक ऐप होता है, वो उन्हीं के मोबाइल में होगा, तो वो उसमें आपसे पूछते जाएंगे, आपसे ये पूछेंगे आपका मकान कच्चा है पक्का है, फर्श कैसा बना है, दीवार कैसी है, छत कैसी है, टॉयलेट कैसा है, टॉयलेट में गड्ढे वाला है या कैसा है, किचन कैसी है, उसमें गैस है, रोशनी की, मतलब इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो आपसे लेंगे, वो फीड करेंगे।
1: किसी को भी भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपके घर आके होगी, ये उन लोगों के लिए एक सुविधा दी है सात से इक्कीस के बीच में, कि जिनके पास सुविधा है, जानकारी है, जागरूक है, वो अपना काम कर लें, लेकिन आपके तक एक व्यक्ति पढ़ा लिखा सब कुछ सामान लेकर के आएगा और आपकी इस जनगणना को करेगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। जी सब कुछ
0: और, जी और जो सेल्फ एनुमेरेशन जो है जिसके बारे में बता रहा था, वो एक ऐसी है कि उसमें आम जनता को भी इसमें जोड़ा गया है, जो जागरूक लोग हैं और सामान्य रूप से शिक्षित व्यक्ति हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, उसमें ऐप में जाकर अपने मकान की स्थिति फीड कर सकते हैं। उसमें गूगल से जो लोकेशन है वो भी ओपन हो जाती है।
1: जी जी।
0: और उससे वो आपके मकान की लोकेशन ले लेगा।
1: हाँ हाँ।
0: उस ऐप से फीड कर देगा, उसमें प्रश्न आते जाएंगे और प्रश्न का जो विवरण है, यानी कि किसी प्रश्न को अगर पढ़ने में आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो उसकी डिटेल भी दी गई है और उसके ऑप्शन दिए हैं प्रश्नों के, उनके ऑप्शंस को आपको टच करना है। जैसे कि फर्श पूछा गया है तो फर्श जो है किस प्रकार का है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, कच्चा है, पक्की ईंट का है या कोई टाइल्स का है, तो उसमें ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन को

0: छूना है, टच करना है, और ये 33 प्रश्नों के पश्चात में सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट जो है टच करेंगे तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है सेल्फ एनुमरेशन का, स्वगणना का, और वो उस सेल्फ एनुमरेशन का जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जब
1: आपका हो जाए पूरा
0: पूरा हो जाए तो उसमें आएगा, वो आपको रखना है अपने पास में, और जब प्रगणक आपके पास में आएगा तो उस नंबर को देना है। तो प्रगणक उस नंबर को अपने मोबाइल में ऐप में फीड करेगा, तो वो अपने आप उसके मोबाइल में ओपन हो जाएगा और वो उसका सत्यापन करेगा
1: जी। मतलब एक तरह से आपने जो काम किया उसको वेरिफिकेशन करके नेक्स्ट उसको आगे बढ़ा दिया।
0: इसमें गणना, जनगणना में स्वयं अपनी भागीदारी करके आदमी को अच्छा लग सकता है, और इसमें उस एक तरह से उसका योगदान भी है, और क्योंकि बहुत इजी है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसमें 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट में,
1: और अपनी जानकारी आपको चूंकि ठीक से पता है तो आप ठीक से उसमें फीड कर सकते हैं, और सिस्टम का और जो हमारी व्यवस्था है उसके हाथ मजबूत कर सकते हैं।
0: ऐप इतना इजी बनाया गया है हैंडल करना, यूज करना, और प्रत्येक प्रश्न के संबंध में डिटेल भी दिया हुआ है, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसका विवरण दिया हुआ है, उसको पढ़ के भी उसमें
1: जी। एक श्रोता हमसे और जुड़ रहे हैं, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी।
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं सादाबाद से दीपक कुमार बोल रहा हूँ।
1: सादाबाद से दीपक कुमार जी, बताइए भैया प्रश्न आप।
0: बताइए दीपक जी।
2: मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जनगणना होती है, इतने पूरे परिवार का ही मतलब जनगणना होगी, सदस्यों के नाम भी बताने पड़ेंगे?
0: नहीं नहीं, इसमें ऐसा है, ये दो स्टेप में है, दो चरणों में है। अभी जो पहला चरण स्टार्ट हुआ है 7 मई से और ये 20 जून तक रहेगा, इसमें केवल मकानों की गणना होगी, मकान सूचीकरण होगा, यानी कि मकान आपका कैसा बना है, कच्चा है, पक्का है, शौचालय कैसा है। इसमें केवल जो मुखिया का नाम दिया जाता है और परिवार के कितने सदस्य हैं उनका वो संख्या लिखी जाती है, और बाकी जो मनुष्यों की जो गणना है या आदमियों के बारे में जो डिटेल जो जानकारी है, इसका जो दूसरा चरण होगा जो फरवरी 2027 में होगा
1: जी जी, वहाँ ये उसके नंबर्स के पूछे जाएंगे मेंबर का, तो इसीलिए इसका जनगणना 2027 नाम भी रखा गया। दीपक जी,
0: अभी इसका जो नाम है इस प्रथम चरण का वो मकान सूचीकरण एवं मकान गणना, यानी कि कितने मकान हैं हमारे,
2: मकानों की गणना होगी सर,
0: बस मकानों की गणना, और मकान जो है कैसे बने हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं उनके अंदर है।
1: ठीक है दीपक भैया। एक सर एक प्रश्न आया है, ये लिख रहे कर्णवीर सिंह राधा सिटी मथुरा से
0: जी।
1: आप लिखना चाहते हैं कि 2026-27 में जो गणना हो रही है उसमें जाति गणना भी हो रही है क्या, इसमें जैसे वो
0: नहीं तो? अभी जो ये प्रथम चरण है इसमें नहीं है,
1: इसमें नहीं है,
0: जो 2027 वाली आएगी उसमें होगा। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये है, इसमें ये पूछा जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि आपकी कैटेगरी SC ST या ओबीसी में है
1: जी, जी।
0: तो उसमें 3 ऑप्शन है, यानी कि अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है या फिर अन्य में है, यानी कि 3 ही ऑप्शन है। तो उसमें केवल SC की एक तरह से गणना है, ST की है, और बाकी सब अन्य में आ रहा है। ये जस्ट इसमें टच करना है, तो टच करने से ये आ जाता है कि आप किस चीज में हैं,
1: किस वर्ग में हैं,
0: किस वर्ग में
1: है, जाति आपको नहीं है, वर्ग एक तरह से पूछा जाएगा, और वो भी चूंकि बहुत सारी चीजों के लिए कैटेगराइजेशन पहले से हो रखा है, बहुत सारी सुविधाओं का, बहुत सारी योजनाओं का एक लाभार्थी वर्ग है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए SC ST और OBC इस समय 3 ही, OBC नहीं बल्कि अन्य
0: अन्य
1: अदर, तो इस पे आपको टिक करना है और ये फिर आगे आपका चला जाएगा इसमें। सर इसमें अब जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि पहले तो ये अभी स्वगणना हो रही है जो 21 तक चलेगी, फिर 22 जून तक आपका प्रगणक पहुंचेगा,
0: वहां पहुंचेगा।
1: तो हर राज्य में ये इसी समय है या कुछ अलग अलग अलग भी है?
0: नहीं, लगभग इसी समय है, थोड़ा बहुत आगे पीछे जो टाइम है प्रत्येक राज्य के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन इसमें ज्यादा समय का अंतर नहीं है, और दो चरणों में है। प्रथम चरण केवल मकानों का है, मकान सूचीकरण है, दूसरा चरण जो मुख्य चरण होगा वो फरवरी 27 में
1: वो वहां फिर हम व्यक्तियों की संख्या, घर में मेंबर कितने हैं,
0: उसमें जो प्रश्न होंगे उनका

0: उनका जो प्रकार अलग प्रकार का होगा, इन प्रश्नों का अलग प्रकार का।
1: जी। तो एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
0: जी।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्ते भैया।
2: नमस्कार साहब।
0: नमस्कार।
2: हाँ, मैं धोलीबाग से बोल रहा था साहब।
0: जी बताइए।
2: अब जैसे साहब, मेरी माता जी के नाम पे मकान था ये।
0: जी।
2: और साहब वो तो एक्सपायर हो गई है।
0: जी ठीक है।
2: तो साहब इस जनगणना में साहब ये
0: इस, जी जी मैं आपको ये हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मकान के स्वामित्व के संबंध में प्रश्न नहीं पूछा जाता है।
2: अच्छा।
0: बस मकान का ये देखना होता है कि मकान जो है कैसा है, कच्चा है, पक्का है, किचन कैसी है, टॉयलेट कैसा है, रोशनी का क्या इंतजाम है, और घर में रेडियो है नहीं है, इस तरह के जो प्रश्न है वो है। इसमें कहीं भी स्वामित्व से संबंधित नहीं है। मकान किसी के भी नाम हो उससे कोई मतलब नहीं है।
1: आप अगर उस मकान में रह रहे हैं तो इस समय उस मकान की गणना हो रही है, मकान में रह रही सुविधाओं की हो रही है, स्वामित्व वाला प्रश्न नहीं है। तो मान लो आप दो भाई भी हैं तो दोनों भाई भी वहाँ लिख करके दे सकते हैं। क्यों सर
0: जी,
1: एक मकान में अगर दो भाई रह रहे हैं,
0: इसमें जो ये माना गया है कि एक मकान है उसमें जो परिवार रह रहे हैं तो उसको परिवार को मानते हुए जो है की गई है गणना। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग हो परिवार, यानी किचन अलग अलग हो तो उनके अलग अलग,
1: एक ही घर में दो भाई रह रहे हैं दोनों किचन अलग है तो दो यूनिट मान ली जाएंगे इसमें, और घर का एड्रेस एक ही रहेगा।
0: यस, अगर किचन एक ही है तो एक ही माना जाएगा,
1: एक ही माना जाएगा इसमें। अब इसमें सर बहुत सारे प्रश्न लोगों को ये हो रहे हैं कि जैसे ज्यादातर आप देख रहे हैं हम स्वामित्व को लेकर के, हमारे यहाँ कोई चीज होती है तो मिथ पहले तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सा आशंकाएं पहले तैयार हो जाती है। लोग कुछ कह रहे हैं कि ये एनआरसी वाला काम चल रहा है, पर्दे के पीछे कुछ काम हो रहा है, तो एक व्यवस्था से जुड़े होने के नाते आप थोड़ा सा दिलासा दिखाइए कि ये है कि राष्ट्रीय स्तर का बड़ा काम है और इसके उद्देश्य अलग है।
0: बिल्कुल, देखिए इसका उद्देश्य जो है वो हमारी जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है, उसको जो मकानों की स्थिति है, उनकी जो शैक्षिक स्थिति है, हमारे मकान किस प्रकार के हैं, हमारी जो शैक्षिक स्तर है वो किस प्रकार का है। जैसे कि मकानों का हम देखें तो मकान पक्का है, कच्चा है, उसकी फर्श, दीवार, छत कैसी है, पेयजल की जो आपूर्ति है वो कैसी है, शौचालय किस प्रकार का है, उसमें जो किचन है, रसोई घर है, उसमें जो खाना बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, एलपीजी है, मिट्टी का तेल है या लकड़ी है या चूल्हा है, तो ये उसमें टेलीफोन लाइन है, मोबाइल फोन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वाहन कौन सा है, साइकिल है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, इसी तरह से जो रेडियो ट्रांजिस्टर है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सीधे रेडियो इस्तेमाल कर रहे हैं या मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से आप रेडियो यूज कर रहे हैं, इंटरनेट है, लैपटॉप है
1: जी,
0: और इसी तरह के प्रश्न।
1: जी, एक श्रोता जुड़े हैं सर।
0: जी,
1: हाँ,
0: जी।
1: हेलो
3: हेलो, राधे राधे।
1: राधे राधे भैया, नाम बताइए।
3: मैं कृष्ण कुमार त्यागी बोल रहा हूँ, साहब आपके पास से।
1: जी जी जी, बता भैया,
0: बताइए कृष्ण।
3: हम पांच भाई हैं और दो भाई मकान बनाकर आगरा रहते हैं, तो मेरा नाम यहाँ होगी
0: नहीं? उसमें ऐसा है कि जो मकान है, मकान में जो लोग रह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि जैसे परिवार के दो लोग तो यहाँ रह रहे हों, सपोज करो कि पति पत्नी यहाँ पे रह रहे हों एक मकान में, उनके जो बच्चे हैं वो कहीं और रह रहे हों, बच्चे हो सकता है कि बाहर नौकरी कर रहे हों या पढ़ रहे हों, तो जो व्यक्ति जहाँ पे मौजूद है वहीं पे उसकी जनगणना होगी। हो सकता है बच्चे जो है दूसरे शहर में रह रहे हों, हॉस्टल में हों या किराए पर रह रहे हों, या अपना मकान भी हो सकता है या किराए का, जो जैसी स्थिति है। तो इसमें जो है मकानों की स्थिति देखी जाती है कि मकान दुकान है, कोई शैक्षिक संस्थान है, आवासीय है या कोई और सरकारी है, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग जो है एक ही परिवार के लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग परिवार के हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि एक परिवार का के कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग जो है कहीं और रहते हैं, हो सकता है कि पत्नी और बच्चे यहाँ रहते हों और पति हो सकता है बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हों, वहाँ पे हो सकता है किराए का मकान हो, सरकारी मकान हो या अपना मकान हो, तो वहाँ रहते हैं।
1: जी सर, इसी जी क्या कह रहे हैं भैया?
3: प्लॉट प्लॉट
0: जी,
1: प्लॉट का नहीं,
0: प्लॉट का नहीं है,
1: ऐसा मकान जिसमें व्यक्ति रह रहे हैं,
0: जिसमें छत हो।
1: हाँ, तो मतलब ये घर की गणना हो रही है, है ना?
0: गणना हो रही है, वो मकान ऐसा हो सकता है कि वो आवासीय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, खाली
1: परपज कुछ भी हो, इस्तेमाल हो रहा है
0: उसकी, वो होनी चाहिए छत होनी चाहिए।

0: जी एक सर सदर बाजार से भी इसी तरह का प्रश्न है। गोपाल
1: जी
0: पचौरी जी हैं, आप लिख रहे
1: जी
0: हैं कि किसी निवासी के दो मकान हैं, एक में वो खुद रहता है, एक अलग दूसरे मोहल्ले में और उसमें किराएदार रहता है। क्या उस निवासी को दोनों की जानकारी देनी होगी या स्वतः अलग-अलग गणना हो जाएगी किराएदार द्वारा जानकारी देने से?
1: बस इसमें जो है, क्योंकि मकानों की गणना हो रही है, इसमें स्वामित्व की नहीं हो रही गणना। एक आदमी का हो सकता है कि चार मकान हो, छह मकान हो, दुकानें हो सकती हैं, कोई उसका स्कूल भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, तो अलग अलग हो सकती है। तो उसमें स्वामित्व नहीं पूछा जा रहा है। जब वहां पे प्रगणक या उसमें स्वयं करते हैं तो उसमें अलग अलग मकान की अलग अलग होगी। हो सकता है एक मकान में वो स्वयं रहता हो, एक मकान को किराए पे दे रखा हो, एक मकान उसका खाली हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई अलग उसकी
0: नहीं, अब जैसे इस इन्होंने
1: अलग अलग
0: हाँ तो
1: अलग
0: अब
1: अलग
0: इसमें जैसे किराएदार जिस मकान में रह रहा है तो वो किराएदार अपना वो दे देगा उसमें
1: जी,
0: जानकारी।
1: उसमें प्रश्न उसके स्वामित्व का नहीं है।
0: हाँ।
1: केवल उससे ये पूछा जाएगा कि आप वहां पे जो है ये मकान आपका स्वयं का
0: मतलब मकान किस तरह का है, एक तरह से ये गणना हो रही है।
1: बस आपको ये बताना है कि इस मकान के स्वामी आप ही हैं।
0: हाँ।
1: अथवा आप इसमें किराए पर हैं या फिर और कुछ स्थिति है,
0: जी
1: किसी
0: जी
1: अन्य का है।
0: जी जी जी जी चलते चलते एक प्रश्न और ले लेते हैं। हेलो
1: जी
0: जी चलिए प्रश्न कट गया। अब चलते चलते इसमें सर हमने अभी तक जितने प्रश्न लिए कुछ व्हाट्सएप से आए कुछ वहां से, तो समस्या भी लोगों के उसमें जहन में ये आ रही है कि स्वामित्व तो कैसा होगा। चलिए जुड़ रहे हैं शायद लाइन से। हेलो
2: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते भैया।
2: नमस्ते, हम विपिन कुमार बोलेगा।
0: हाँ विपिन जी फटाफट से बोलिए, समय समाप्त हो रहा है जरा। जी बताओ,
2: हम ये पूछना चाह रहे हैं जनगणना से आम लोगों का क्या फायदा होगा?
0: जी जी
1: इसमें आम लोगों का बहुत फायदा है। देखिए जब हमारे पास ऐसे आंकड़े होंगे कि हमारे देश में या हमारे राज्य में हमारे शहर में कितने जो है मकान कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, कितने में टॉयलेट है, कितने में रोशनी का क्या इंतजाम है, वाहन कितने हैं, ठीक है, रेडियो मोबाइल की क्या स्थिति है, कितने लोगों के पास है नहीं है, तो ये सब आंकड़े जो है हमारे सामने होंगे, तो उनके आगे फिर विकास की यात्रा के लिए प्लानिंग करना और कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कार्य करने की ज़रूरत है, कहाँ पे जो है पीने के पानी की दिक्कत है, कहीं पे जो है अन्य कोई समस्या हो सकती है, तो वो सब आंकड़ों से, और ये आंकड़े बड़े अच्छे ढंग से प्राप्त होते हैं।
0: जी जी जी, जी एक सिस्टमेटिक तरीके से
1: ये आंकड़े जो है बड़े विश्वसनीय माने जा रहे हैं।
0: विश्वसनीय माने जा रहे हैं। तो श्रोताओ ये जो लगभग 36 राज्य, 784 डिस्ट्रिक्ट, 7092 सब डिस्ट्रिक्ट और 6,39,902 गाँव में ये पूरे देश की संख्या का काम हो रहा है, और जैसा कि आज जो हमारे विशेषज्ञ वार्ताकार राकेश कुमार त्यागी जी हैं जो वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी हैं, सहायक नगर आयुक्त हैं और नोडल अधिकारी भी हैं नगर निगम मथुरा क्षेत्र के इस कार्य के लिए, वो ये बता रहे हैं कि ये जो कार्य है, ये जो पुनीत कार्य है, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्य है, ये 2047 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि हमारा हम देश की आज़ादी के 100वें साल में प्रवेश होंगे, विकसित राष्ट्र होगा, तो ये छोटे छोटे आंकड़े हैं ना। विकसित राष्ट्र होने के लिए सिर्फ हम घोषित कर दें इससे विकसित राष्ट्र नहीं होता। जब हम अमेरिका और ब्रिटेन के बराबरी की बात करते हैं तो वहाँ की सुविधाओं का, वहाँ का स्तर का, वहाँ के जीवन स्तर का, वहाँ के लोगों की जी
1: मैं बीच
0: जी,
1: में बस इतना बताना जी, चाहूंगा कि जो प्रगणक आपके पास पहुंचेंगे तो उनको अच्छे से जो है आप जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं उनको समझते हुए सुनते हुए अच्छे से उसका जवाब दें, सही जवाब दें। इसका केवल एक सूचना के लिए है कि हमारे देश में कितने कच्चे घर हैं, कितने पक्के हैं, इसका इसका आपके स्वामित्व से या कहीं भी इसके आंकड़े कहीं किसी को नहीं दिखाए जाएंगे, कहीं किसी को इसमें कोई निजी उपयोग नहीं होना है, केवल एक एक सूचना निकल के आ जाती है कि कितने पक्के मकान है।
0: मतलब तो इसमें गवर्नमेंट को सर ये अगर इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि गवर्नमेंट को अब आगे 25 सालों में कहाँ फोकस करना है, एक व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने
1: के लिए
0: उसको क्या पीने के पानी की सुविधा देनी है, क्या मकानों पर काम करना है, क्या दुकानों पर काम करना है,
1: बिल्कुल
0: तो ये डाटा वहां काम आएगा
1: क्योंकि ये विकास के रास्ते की दिशा तय करते हैं कि हमको क्या क्या अभी और कदम उठाने हैं, किन क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। केवल प्रश्नों को सही से सुन के और सही जवाब दें, इसमें कोई इधर उधर से करके नहीं देना,
0: घबराने की जरूरत नहीं
1: और
0: है।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक एक ये योगदान है और एक एक संक्षिप्त कार्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है।
0: अच्छा इसमें चलते चलते मेरे जहन में आ रहा है, जैसे मान लो एक परिवार में चार व्यक्तियों की

0: यूनिट है या
1: जी
0: 5 लोग रह रहे हैं
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: और थोड़ा सब समर्थ हो गए, तो
1: जी
0: एक मकान मान लो उसकी पत्नी के नाम है, एक उसके खुद के नाम है, तो क्या फिर यहाँ फिर ऐसा देना पड़ेगा?
1: बिल्कुल। देखिए मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि आपके स्वामित्व से कोई
0: कोई
1: मतलब नहीं
0: मतलब
1: है।
0: ही नहीं, वो तो मकान का देना है।
1: बिल्कुल, आपके नाम हो सकता है, आपके परिवार पत्नी किसी के नाम हो सकता है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति के नाम ना हो,
0: किसी
1: आपके
0: और
1: अन्य किसी
0: जी
1: मित्र
0: जी
1: के नाम पे हो, आप वैसे ही रह रहे हो, किराए पे रह
0: तो
1: सकते
0: ये
1: हो।
0: घर की गणना है,
1: हाँ
0: स्वामित्व की
1: यस यस
0: गणना जी।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये मकानों की गणना है, मकान
0: हाँ
1: कैसे हैं, कैसी स्थिति है,
0: जी
1: बस
0: जी
1: उसकी
0: और
1: गणना
0: मकान
1: है।
0: में किस तरह के सामान है।
1: और स्वामित्व की गणना नहीं है, और उसमें क्या क्या इस तरह की जो चीजें हैं वो क्या हैं।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: इसमें मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इसमें रेडियो का भी पूछा जाता है,
0: हाँ
1: क्योंकि
0: हाँ
1: हम आकाशवाणी से हैं
0: जी
1: और आकाशवाणी के माध्यम से, आपके माध्यम से ये चीजें जा रही हैं
0: जी
1: लोगों
0: जी
1: तक। तो इसमें ये भी पूछा जा एक प्रश्न है कि आप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं,
0: हाँ
1: और वो किस प्रकार से करते हैं, कि आपके घर में उसमें जो ऑप्शन आते हैं कि रेडियो है,
0: सेट है।
1: अथवा आप अपने मोबाइल के माध्यम से करते हैं या
0: हाँ
1: इंटरनेट के माध्यम से कैसे करते
0: हाँ
1: हैं, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है।
0: जी, मतलब अब जो सिस्टम है सरकारी वो ये मान के चल रहा है कि सेट पे ही नहीं, आप मोबाइल पे भी सुन सकते हैं, आप नेट पे
1: यस
0: भी सुन
1: यस
0: सकते हैं, लेकिन
1: बिल्कुल
0: आप चीजों से जुड़े हुए हैं, चीजों की उपयोगिता आपके जीवन में है, कैसे रह रहे हैं, किन चीजों के साथ रह रहे हैं, इन सब चीजों पर ही आपको अपनी राय देनी है और सटीक राय देनी है, सही राय देनी है। चलते चलते कुछ सर और कहना चाहें।
1: बस मेरा ये अपील है कि एक राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्र के निर्माण का और राष्ट्र के विकास के मार्ग को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें सिर्फ एक सूचना है, एक आंकड़े हैं, एक गणना है, इसमें किसी के स्वामित्व से या अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। केवल जो चीज़ें हैं उनको वैसा ही चीज़ें जो है
0: बताना है।
1: बताना है, और प्रगणक उसको उसमें मोबाइल में फीड करेंगे, वो फिर सूचना आगे एक साथ इकट्ठी होकर के आगे जाएगी। तो
0: जी
1: उससे ये
0: जी
1: पता लग पाएगा, मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे मथुरा शहर में कितने पक्के मकान हैं, कितने लोगों के पास रेडियो है, कितने लोगों के पास साइकिल है, कितने लोगों के पास जो है
0: कार है,
1: एलपीजी
0: स्कूटर है।
1: कनेक्शन
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: इस
0: जी
1: तरह
0: जी
1: के इतने विश्वसनीय आंकड़े इससे निकल के आते हैं,
0: जी
1: और इसका कहीं स्वामित्व से या उससे संबंध नहीं
0: जी
1: है।
0: तो श्रोताओं, आप थे श्री राकेश कुमार त्यागी जी, सहायक जो निधि सहायक आयुक्त हैं अपने नगर निगम मथुरा क्षेत्र के, नोडल अधिकारी भी हैं, इस कार्य के जो जनगणना 2027 का चल रहा है जानकारी दे रहे थे, और आपको समझ में आ गया होगा, मेरी भी समझ में आ गया कि ये स्वामित्व का प्रश्न नहीं है, स्वामित्व की गणना नहीं है, मकान की है, और मकान किस तरह का है, उसमें क्या सामान है, आपके जीवन स्तर कैसा है।
1: बस मैं एक लास्ट में एक अपील करना
0: जी जी
1: चाहूंगा,
0: बिल्कुल, स्वागत है
1: एक
0: आपका।
1: निवेदन करना चाहूंगा आप के माध्यम से सभी श्रोताओं को, कि ये स्वयं गणना है, तो मेरा ये अनुरोध है कि स्वयं गणना में आप लोग जुड़ें। जो अपने मोबाइल ऐप पे SE सेंसस लिखेंगे तो तुरंत गूगल पे वो आ जाता है, गूगल पे लिखने से, और उस ऐप पे आप जाएंगे तो इतना इजी है कि आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा फीड करने में। उसमें पूछा जाएगा कि आपका मकान कच्चा है पक्का है, आप उसमें वो कर देंगे, टच कर देंगे। तो मेरा अनुरोध है कि स्वयं गणना में ज्यादा से ज्यादा
0: जी,
1: लोग
0: और
1: जुड़े,
0: इसमें जानकारी मतलब ऑप्शन के रूप में आएगी, आपको
1: ऑप्शन के
0: लिखना
1: रूप,
0: नहीं है।
1: लिखना नहीं है, टाइप
0: हाँ
1: नहीं करना
0: जी
1: है,
0: जी तो बहुत आसान है
1: बहुत आसान है,
0: सर।
1: टच करना है। और खासकर जैसे कि जो नई युवा पीढ़ी है वो तो काफी मोबाइल और इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो जो है फीड कर सकते हैं
0: मतलब परिवार में
1: उसमें।
0: कोई भी एंड्रॉइड चला रहा है
1: यस
0: उसके
1: बिल्कुल,
0: माध्यम से हम
1: उसमें
0: अपने परिवार की।
1: जैसे इसमें जाते हैं आप अपनी लोकेशन उसमें फीड करते हैं, अपना नाम फीड करते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल, तो तुरंत उसमें जो है एक OTP आता है, उस OTP को उसमें फीड करते ही वो जो प्रश्न है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है सभी से कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके अपने इसको सेल्फ एनुमरेशन के माध्यम से, स्वयं गणना के माध्यम से इसमें जुड़ें
0: जी
1: और अपना योगदान दें।
0: जी तो श्रोताओं, ये राष्ट्र का काम है, हमारे एक उत्तरदायित्व का काम है, और उत्तरदायित्व तो हमें राष्ट्र के निर्माण में हमारी सहभागिता निभाने का एक अवसर है, तो इस कार्य को उसी रूप में लें, और इस कार्य में अगर आप जुड़ पाएंगे तो देश का और समाज का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज हमारे साथ सर आप आए, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: जी।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम जनगणना 2027 के विविध पहलुओं के विषय पर। वार्ताकार विशेषज्ञ थे श्री राकेश कुमार त्यागी, उप नगर आयुक्त एवं नगर निगम क्षेत्र के मथुरा के जनगणना 2027 के नोडल अधिकारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: प्रस्तुत है ब्रज लोक गीत। आज के कलाकार हैं ओम प्रकाश गोप।

अरे नैना नैना कजरा हवा की आंखन में सजी लो, नैना नैना कजरा हवा की पची रंगी हार बाके सीना पे चसी दो,

तन मिस्ती बाके नैनन में कज रहा दांतन मिस्ती बाके नैनन में कज रहा जवानी को बापे चढ़ रहे हो गज रहा

गोला गोला घूंघट में बाटे चंटे पर कहवाली हो जादू सोहर

ਜਵਾਰੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ।

पानी की खातिर कर दई तेरे गाम थकाई। अरे तेरे गाम को मीठो पानी फूले लाए समाई, और तेरे गाम को मीठो पानी फूले लाए समाई।

बिन पेड़न बरसात ना होवे अब तो करो उपाय, बिन पेड़न बरसात ना होवे अब तो करो उपाय। कह रहे गोप बजा के ढोल बजा के रखियो देवरिया, कह रहे गोप बजा के ढोल बजा के रखियो देवरिया। अरे लखियो देवरिया बचा के लखियो देवरिया।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार थे ओम प्रकाश गोप। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने

0: विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन-स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी।

0: से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
1: प्रस्तुत है। आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 10 आप सुनेंगे नौटंकी, कुदरत की मार से कैसे बचे, आलेख विजेंद्र सिंह वर्मा का होगा। प्रायोजक होंगे ब्रज कला केंद्र मथुरा।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसमें पहनावा के अंतर्गत वार्ता प्रसारित की जाएगी जमाना मिक्स और मैच का। वार्ताकार होंगी कृष्णा चौधरी।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युवावाणी। इसमें आप सुनेंगे विज्ञान वार्ता वेबसाइट की दुनिया। वार्ताकार होंगी रुचि अग्रवाल।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, गर्मियों में पशुओं के रोग और बचाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर राम सागर, इनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा। कवित्री होंगी पूनम शर्मा।

फिल्म संगीत श्रोता रात्रि 8:30 पर और 8 बजे भी सुन सकेंगे। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी आप सुन सकेंगे संध्या 7:31 पर।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।

0: ఆ మాస్క్ తీసుకుని
1: హే నమన్ కుంకు

है नमन उनको कि जो देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए, उनकी शहादत का क्या मोल लगाओगे जो हमेशा हमेशा के लिए अमिट कहानी हो गए। वनिता लोक सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी सखियों श्रोताओं को भावना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके साथ भावना शर्मा। जैसे कि मैंने अभी चार लाइन बोली तो आपको नहीं मालूम चला होगा मैं आखिर किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि बहनों हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिनका जीवन मातृभूमि की सेवा में ही था। अगर हम इनके विषय में जान लें, सबसे पहले तो इनका नाम मैं बता दूं, इनका नाम है फरकुद्दीन अली अहमद, जिनके जन्म के विषय में जान लेते हैं। आज ही के दिन 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में इनका जन्म हुआ। इनके पिता फौज में थे और अंग्रेजी सेना में इंडियन मेडिकल सर्विस के तहत कर्नल पद पे थे। ये अच्छे नामी घराने से थे। इनके परिवार में बेहद संपन्नता और शिक्षा के लिए भी बहुत जागरूकता थी। अच्छे पढ़े लिखे थे और इनकी स्कूलिंग भी यूपी के गोंडा से हुई थी। फिर पिता के ट्रांसफ़र की वजह से दिल्ली चले आए थे और फिर आगे की पढ़ाई इन्होंने स्टीफन कॉलेज से की। फिर उच्च अध्ययन के लिए ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके हाई कोर्ट में वकील के तौर पर नामांकित हुए। इनके पिता से ये हमेशा ही प्रेरित रहे और इनके पिता एक राष्ट्रवादी शख्स थे, लेकिन ये पिता से भी एक कदम आगे रहे। 1937 में असम लेजिस्लेटिव असेंबली में ये निर्वाचित हुए। वहाँ पर उनकी मुलाकात जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी से हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो फरकुद्दीन अली अहमद ने भी उसमें भाग लिया और अंग्रेजी सरकार ने फिर इनको पकड़ भी लिया था, गिरफ्तार कर लिया था एक वर्ष के लिए 1940 में। फिर 1945 में ये पुनः जेल भी गए थे और ये सभी आंदोलनों में शामिल थे तो उनको जेल कई बार जाना पड़ा। 3.5 वर्ष के लिए पुनः जेल चले गए। और अगर हम इनके व्यक्तित्व के जीवन में बात करें तो 9 नवंबर 1945 को इनकी निकाह हुआ था आविदा हैदर के साथ और इनकी 3 संतानें थीं। इनकी बेगम भी बहुत ही सुलझे विचारों की महिला थी और उनका भी बहुत रुचि थी सांस्कृतिक गतिविधियों में। और फरकुद्दीन अली अहमद जी खेल में बहुत रुचि रखते थे और ये आसाम क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष रहे थे, आसाम स्पोर्ट्स काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहे और भारत वर्ष के 5वें राष्ट्रपति बने। भारत वर्ष की धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था एक ज्वलंत प्रमाण है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उनका राजनीतिक जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गुजरा और सक्रिय उनकी भागीदारी रही। श्री फरकुद्दीन अली अहमद भारत के एक ऐसे महान सपूत थे जो हमारी परंपरा और सभ्यता की सर्वोत्तम खूबियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उनकी निस्वार्थ सेवा, मानववाद व गहन संवेदना को सदैव याद किया जाएगा। 11 फरवरी 1977 की सुबह इनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया और राष्ट्रपति फरकुद्दीन अली अहमद की स्मृति को शाश्वत रख

रखने के लिए भारत सरकार ने इनके चित्र से युक्त डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो शशत नमन ऐसे महान व्यक्तित्व को। तो चलिए बहनों, अब हम अपने बारे में बात कर लेते हैं। बहनों, दिन भर काम ही काम, सुबह से लेकर रात तक, इस बीच भूल जाते हैं कि करना भी है हमको आराम। बहनों, आप हो तो आपका घर है, आपका ध्यान कौन रखेगा? आपने तो सबका ध्यान रखा, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका ध्यान कौन रखेगा। आपका ध्यान कोई और नहीं, आप खुद ही रखेंगी। तो उसके लिए आपको अपने लिए एक पूरी लिस्ट बनानी चाहिए कि कब कब पे कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन चीज़ें हमें इस पूरे जो हमारी डेली रूटीन है उसमें हमें शामिल करनी है। अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे शारीरिक व्यायाम से बात करें, कर सकती हैं तो ज़रूर करें, अगर वॉक पे जा सकती हैं तो ज़रूर जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, शारीरिक कार्य को करें, लेकिन ज़्यादा थकान वाला काम ना हो। अगर ऐसा है तो आप बीच बीच में ब्रेक ले लें। अगर आप दवा लेती हैं तो भी अनदेखा ना करें, समय से दवा लें, तो उसके लिए नाश्ता खाइए, सुबह खाइए, उसके बाद दवाई खाइए, समय से ही सारी चीज़ें करिए। अपने पोषक संबंधी चीज़ों को एक टाइम टेबल बना करके खाएं। जैसे कि आपको लगता है कि मैं भूल जाती हूँ, तो उसके लिए एक टाइम टेबल बना लें, क्योंकि औरत अपने लिए ये सब नहीं सोचती है, वो सोचती है मैं अगर नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर दवा दूध से ले हैं लेनी है तो आप दूध ही पीजिए, क्योंकि होता क्या है, अमूमन औरतें ये सोचती हैं मैं एक गिलास दूध पी लूँगी तो कम पड़ जाएगा। तो बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें, आप ऐसी सोच को बिल्कुल त्यागें। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब खुश हैं आपके घर में, कोई भी चीज़ की खुद के लिए कमी ना रखें। फल, सब्जी, मेवा, दूध, दही, पनीर, जो भी कुछ घर में आता है वो सब चीज़ आपको भी खानी है, क्योंकि आप हैं तो आपका घर है, और जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, आप जिसे कभी खोना नहीं चाहती, तो फिर उसके लिए आप क्यों अपनी सोच नहीं बदल रही कि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बल्कि अभी से ही आप अपना खुद का ध्यान रखेंगी। जब से होश संभाला तूने तब से दौड़ रही है, अब तो थम जा जरा, खुद के लिए सोच, खुद को क्यों तोड़ रही है। तो बहनों, इस चर्चा को तो हमने यहीं ब्रेक कर दिया है, और अब आपको सुनवा देते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

तो बहनों, अभी आपने ये गीत सुना। तो बहनों, आज हम आपको सुनवा रहे हैं

0: पहनावा क्रम में जमाना मिक्स और मैच का। वार्ताकार हैं कृष्णा चौधरी। तो आइए सुनते हैं अब ये वार्ता।
1: पहनावा वह शब्द है जिससे किसी व्यक्ति विशेष, समाज, संस्कृति या सभ्यता का पता चलता है। पहनावे से किसी व्यक्ति को देखकर हम उसकी सोच समझ व उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। अधिकांशतः यह देखा गया है कि हम किसी व्यक्ति की एक झलक देखकर व उसके पहनावे को देखकर ही उसके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाने लगते हैं। इसलिए पहनावा हमारे व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाता है। कपड़ों से शरीर आकर्षक व सभ्य लगता है। हर इंसान की चाह सुंदर दिखना होती है और हमारा पहनावा उसी ढंग से होता है। पहनावे में जगह, जलवायु, संस्कृति, राज्य व देश के हिसाब से भिन्नता पाई जा सकती है। पहनावे से हमारी सभ्यता व संस्कृति का पता चलता है। हर देश व राज्य का अपना अलग ही पहनावा होता है। वह अपने पहनावे से ही अपनी पहचान बनाते हैं। जैसे भारत में महिलाओं को साड़ी से पहचाना जाता है, यह भारत की परंपरागत पहनावा है और हर महिला इसमें सबसे अधिक आकर्षक लगती है। विदेशी महिलाएं अपने फैशन परस्त लिबासों के लिए जानी जाती है, लेकिन यह सब कल की बात लगती है। आज का युग परिवर्तन का युग है। अब सभी अलग अलग राज्यों व देशों के पहनावे को भी अपनाने लगे हैं। पहनावे के साथ साथ विचारधारा में भी परिवर्तन आया है। यदि हम इसे पहनावे के संदर्भ में देखें तो भारतीय परिधानों के साथ पाश्चात्य संस्कृति का पहनावा भी खूब चलन में है, जिसे हम भारतीयों ने बहुत खूबी के साथ अपनाया। यह हम भारतीयों की ही विशेषता है कि हम किसी भी संस्कृति को आसानी से समावेशित कर लेते हैं। आज पहनावा शारीरिक बनावट, मौसम व आराम के अनुसार बदल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से व अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपने लिए पहनावे में बदलाव लाने की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से है। आज के आधुनिक युग में पहनावा फैशन के अनुसार बदल रहा है। जो पोशाक मुगल कालीन व मध्यकालीन समय में पहनी जाती थी, वही फिर से दिखाई देने लगी है। कहा जाता है कि जमाना फिर से लौट के आ रहा है। पहले तो वस्त्र व आभूषण चलन में थे, वही एक बार फिर से लोगों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य पहनावा भी दिखाई दे रहा है। आज जमाना मिक्स एंड मैच का है। ज़्यादातर आजकल ऑफिस मार्केट में जहां तक पाश्चात्य पहनावा ही दिखाई देता है, क्योंकि यह युग के हिसाब से काफ़ी सुविधाजनक प्रतीत होता है। कामकाजी महिलाओं व पुरुषों के लिए यह वरदान साबित होता है। हर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों व सुविधा के अनुसार स्वयं को ढालना चाहता है। पहनावा इस बदलाव में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पहनावे को आकर्षक व सुविधा अनुसार बनाने के लिए ही आज मिक्स एंड मैच का प्रचलन बढ़ गया है। पुरानी चीज़ों के साथ कुछ नया प्रयोग करके हम पहनावे को फैशन के अनुरूप बना

सकते हैं। पहनावा धीरे धीरे आज के फैशन में शामिल हो गया है। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे पहनावे से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और ना ही मर्यादाओं का उल्लंघन हो। भारतीय समाज में मूल्यों का अति महत्व है, इसलिए हम पूर्ण रूप से न सही किंतु आंशिक रूप से भी पुराने को नए के साथ मिला के एक नई सोच विकसित कर सकते हैं, जो कि हमारे पहनावे को भी भलीभांति मैच करती है। जीन्स शर्ट टॉप आदि का खूब चलन है, किंतु त्योहारों व विवाह शादियों में महिलाओं को भारतीय परिधानों में सजना ही सुहाता है। बालिकाएं व महिलाएं साड़ी सलवार सूट लहंगों में सजी संवरी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का पालन करती हैं और सौंदर्य की अनोखी छटा बिखेरती हैं। पहनावे को हम माहौल के अनुसार मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जिस तरह हम भारतीय विदेशी वस्त्रों की ओर आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार विदेशी भी अपने पहनावे में भारतीय परिधानों आभूषणों को महत्व देने लगे हैं। वह टॉप के साथ लहंगा मैच करके पहनते हैं। छोटे छोटे आभूषणों को अपनी पोशाक के अनुसार उसके रंग से मैच करके पहनते हैं। आजकल भारतीय बिंदी बहुत चलन में है। विदेशियों द्वारा यह सबसे अधिक पसंद की जाने वाली चीज़ है। अब लोग पहनावे की ओर काफ़ी उत्सुक नज़र आते हैं। वहीं मीडिया ने उन्हें मिक्स एंड मैच के लिए काफ़ी जागरूक बनाया है। लोगों की सोच समझ और टेस्ट पहनावे को लेकर बहुत बदल चुका है। वे अपने लुक्स को लेकर काफ़ी बदल रहे हैं। किस रंग के वस्त्रों के साथ किस रंग के जूते चप्पल बेली सैंडल पहने जीन्स के साथ जूते या हील्स पहने, इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी अपनी लंबाई चौड़ाई के अनुसार वस्त्रों तथा जूतों का चुनाव करते हैं। आजकल तो बाजार में दुकानदार स्वयं ही समय व फैशन के अनुसार पूछकर ही सामान दिखाते हैं। पहनावे के साथ साथ मेकअप भी मैचिंग के अनुसार किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में पहले से यह पूछा जाता है कि किस अवसर के लिए तैयार होना है तथा परिधान भारतीय है या पाश्चात्य, समारोह घर का है या यहीं यूं ही हल्का सा कोई, उसी के अनुसार पहनावे और मेकअप को मैच किया जाता है। यह फैशन का ज़माना है, भौतिकता का ज़माना है, रंगों का ज़माना है। प्रत्येक को सबसे अलग दिखने की चाह है। नए ज़माने में बहुत सी चीज़ों में बदलाव आया। सबसे अधिक जो परिवर्तन आया उसमें पहनावा सबसे ऊपर है। पुरानी सभी चीज़ों का आधुनिकीकरण हो रहा है। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों जैसे बनारसी सिल्क जरी सूती कांथा वर्क लखनवी कढ़ाई पश्मीना फुलकारी, सभी अलग अलग किस्म के वस्त्रों को बहुत सुंदर व कलात्मक तरीके से मिक्स करके पहनावे को एक नया रूप दिया गया। सिल्क तो सदाबहार है, यह हमेशा से सभी के द्वारा पसंद किया जाता रहा है। समय के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके नया रूप दिया गया। किसी भी किस्म के कपड़े को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रयोग किया जा रहा है। आजकल नेट का फैशन बहुत है, इसे भी सूती तथा जरी के कपड़े के साथ मिक्स करके खूब पसंद किया जाता है। नए नए डिज़ाइंस हर दिन बाजार में उपलब्ध हैं। नए रंगों का आविष्कार हुआ है। मौसम के अनुसार रंगों का चुनाव किया जाता है। गर्मी में सूती व हल्के रंग के कपड़े शरीर को आराम देते हैं। इसमें मैचिंग के अनुसार नया रूप दिया जा सकता है। नेट व जरदोजी का इस्तेमाल विवाह शादियों में खूब होता है। वहीं सर्दी के मौसम में सिल्क व बनारसी खूब चलन में होता है। पहनावे को सदैव जगह व वातावरण के अनुसार मैच किया जाना चाहिए। पहनावा हमारी कार्यशैली के अनुसार व्यवसाय के अनुसार होना चाहिए। फैशन व पहनावे में महिलाओं के साथ पुरुष भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों के पहनावे में भी परिवर्तन दर्शनीय है। राजा महाराजाओं के समय में शेरवानी व लंबा कुर्ता पहना जाता था, आज वही फिर से प्रचलन में है। पुरुष भी अपने पहनावे को लेकर खूब जागरूक हुए। कुछ परिधान ऐसे हैं जिन्हें महिला व पुरुषों दोनों के द्वारा अपनाया जाता है, जैसे जीन्स टी शर्ट शर्ट जैकेट आदि। वहीं पुरुष कुर्ते के साथ पजामा चूड़ीदार जीन्स आदि पहन रहे हैं। बंद गले के कोट खूब पसंद किए जा रहे हैं। शेरवानी को शादी समारोह में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। अब ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले परिधानों को समय व ज़रूरत के अनुसार मिक्स एंड मैच करके महिलाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। आज का युग क्रांतिकारी युग है, इसमें पहनावे में फैशन के अनुसार विशेष क्रांति आई। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पहनावा हमारी पहचान होता है। इससे हमारी सोच व समझ हमारे समाज संस्कृति परंपरा की झलक दिखाई देती है। पहनावा देश

0: पहचान होती है और अगर इसमें हर देश की संस्कृति व सभ्यता का मिलन हो जाए तो व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आज के आधुनिक युग में पहनावे में मिक्स एंड मैच बेहद जरूरी हो गया है।
1: आप सुन रही थी जमाना है मिक्स एंड मैच का, वार्ताकार थी कृष्णा चौधरी। तो बहनों अब इसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एक गीत के साथ, तो सुना जाए अब ये गीत।

तो अभी हमारी बहनों ने ये गीत सुना और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं, यानी घरेलू टिप्स। तो बहनों, पहला है कि नमक अगर ज़्यादा कच्ची सब्जी में ना डालें, क्योंकि इससे वो पानी छोड़ देती है और मसाला पकता नहीं है, और जब तक मसाला पक नहीं जाएगा सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। तो मसाला जब तेल छोड़ जाए तभी उसमें नमक डालें। दूसरा है, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको थोड़ा भुन जाने के बाद ही उसमें मसाले डालें, क्योंकि इसी समय खुशबू अच्छी आती है। अगर शुरू में ही आप डाल देंगे तो खुशबू नहीं रहेगी, मसालों की सब खुशबू भी आनी बहुत ज़रूरी है। और धनिया सब्जी बन जाने के बाद ही डालें, जिससे उसकी रंगत हरा रंग बना रहे। अगर आलू का पराठा बनाते वक्त अगर फट रहा है तो आटे में सूजी डाल दें तो नहीं होगा, ऐसा फटेगा नहीं। सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो गया है तो उसमें 1-2 चम्मच बेसन मिला दें। अगर आपको रेस्टोरेंट जैसी सब्जी चाहिए तो उसमें हाथ से चूरा करके कसूरी मेथी डाल दें, या फिर भून के भी डाल सकते हैं, या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, उसमें काजू की ग्रेवी भी डाल सकते हैं। अगर वो पनीर की सब्जी है तो काजू की ग्रेवी डाल दें, अदरवाइज़ आप दूसरी कोई भी सब्जी हो तो उसमें आप कसूरी मेथी, यानी आलू वगैरह की सब्जी में कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। अगला है कि अगर आपका डोसा टाइट नहीं बनता, एकदम क्रंची सा नहीं दिखता है, तो उसमें मेथी दाना, जब आप भिगो रही हैं तो उस चावल और दाल के साथ मेथी दाना डालें, चना दाल भी डालें, और पीसते वक्त चने चीनी के कुछ दाने डाल दें, जिससे कि वो अच्छा बनता है, बिल्कुल वैसा जैसा हम बाहर खाते हैं। इडली का भी आप ध्यान रखें कि अगर इडली भिगोते वक्त अगर आप सूजी के साथ मुरमुरा डाल करके और उसमें 2-3 आइस की क्यूब डाल करके आप वो चलाती हैं, मिक्सी में अगर आप चला लेती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी फूली फूली इडली बनती हैं। तो बहनों, ये थी आज की घरेलू टिप्स, और समय है आपसे विदा लेने का। तो विदा लें उससे पहले दो लाइन ज़रूर बोलना चाहेंगे, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है बस चैन से बसर कीजिए, न परेशान किसी को कीजिए न हैरान किसी को कीजिए, लोग लाख गलत भी बोलें बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए, न रूठा किसी से कीजिए न झूठा वादा किसी से कीजिए, कुछ फुर्सत के पल निकालिए और कभी खुद से भी बातें कीजिए। तो बहनों, इसी के साथ आज के वनिता लोक कार्यक्रम को समाप्त करने की भावना को दे आज्ञा। फिर मिलेंगे कुछ नए ताजा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था आंखें। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था रवि ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म अजनबी से। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी वर्मन का, स्वर है किशोर कुमार का।

0: सरदार
1: जी।
0: वो यहीं पर
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्व

0: विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रेजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई

0: ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली।

0: सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था बाजार। शब्द रचना बशर नवाज की थी, संगीत दिया था खय्याम ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म चिराग से इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है।

महेंद्र कपूर और भूपेंद्र के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था दहलीज। इस गीत को लिखा था हसन कमाल ने, संगीत दिया था रवि ने। और आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में ये गीत। फिल्म है वक्त, शब्द रचना शाहिर लुधियानवी की, संगीत दिया है रवि ने।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म वक्त का ये गीत। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था रवि ने।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म दस्तक के इस गीत के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर जी आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। इस मीटर पर द्वितीय सभा के आरंभ प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों को अच्छी तरह से अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, युवाणी कार्यक्रम में आज की बात के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। आज उनकी जयंती है। इसी क्रम में हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के बारे में। साथ ही हमारा तीसरा विषय होगा विश्व

0: एड्स वैक्सीन दिवस।
1: दोस्तों, भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई 1905 को हुआ था। वे एक सरल, शिक्षित और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी और बाद में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया। उनका जीवन हमें ये संदेश देता है कि लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं बल्कि कर्तव्यों और सेवाभाव से भी मजबूत होता है। आज जब युवा पीढ़ी अपने भविष्य को आकार दे रही है, तब ऐसे महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेना अत्यंत आवश्यक है। फखरुद्दीन अली जी शिक्षा और सामाजिक समरसता के समर्थक थे। वे मानते थे कि देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज का प्रत्येक वर्ग आगे बढ़े और शिक्षा का प्रकाश हर घर तक पहुंचे। दोस्तों, शिक्षा ही वो साधन है जो सपनों को नई उड़ान देती है। देश के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता देना है। विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक छात्र छात्राएं इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। आज आवश्यकता है जागरूकता की। यदि आपके पास कोई विद्यार्थी आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ने से वंचित रह रहा है या पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा है, तो उसे इन योजनाओं की जानकारी अवश्य दें। एक छोटी सी जानकारी किसी का भविष्य बदल सकती है। युवाओं के लिए यह भी आवश्यक है दोस्तों कि केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी प्रतिभा और मेहनत से समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दें। कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तो अभी आप सुन रहे थे पापोन और रोंकड़ी गुप्ता की आवाज़ों में सुई धागा फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था वरुण ग्रोवर ने और संगीत तैयार किया था अनु मलिक ने। आइए लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। अंतराल के बाद हम बात करेंगे वैक्सीन, एड्स वैक्सीन दिवस के बारे में।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: दोस्तों अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का एक ऐसा वायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि समय रहते उपचार न मिले तो ये बीमारी एड्स का रूप ले सकती है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस में ये याद दिलाता है कि जागरूकता, सावधानी और वैज्ञानिक अनुसंधान इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे बड़े हथियार हैं। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसी प्रभावी वैक्सीन विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे भविष्य में HIV संक्रमण को रोका जा सके। दोस्तों एड्स केवल एक बीमारी नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी विषय है। अक्सर जानकारी के अभाव में

लोग संक्रमित व्यक्तियों से भेदभाव करने लगते हैं, जबकि सच ये है कि प्रेम, सहयोग और संवेदनशील व्यवहार ही सबसे बड़ी मानवता है। एचआईवी संक्रमण से बचाव के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां अपनानी चाहिए, जैसे सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवहार, संक्रमित सुई या ब्लेड का प्रयोग ना करना और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहना। आज युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे सही जानकारी प्राप्त करें और समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करें, क्योंकि जागरूकता युवा ही स्वस्थ भारत की पहचान है। तो दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस हमें ये संदेश देता है कि विज्ञान, जागरूकता और संवेदनशीलता मिलकर ही इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए संकल्प लें, सही जानकारी अपनाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे और मानव का साथ निभाएंगे। इसी संदेश के साथ आइए अब आपको सुनवाते हैं एक गीत, जिसे गाया है शफकत अमानत अली खान ने और इनका साथ दे रहे हैं सलीम अर्जेंट ने। फिल्म का नाम है डोर।

0: मीर अली हुसैन का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे सलीम सुलेमान के संगीत निर्देशन में। शफाकत अमानत अली खान और सलीम अर्जुन की आवाज़ें थी। फिल्म थी टोर। दोस्तों अब आपको सुनवा रहे हैं विज्ञान वार्ता। शीर्षक है वेबसाइट्स की दुनिया। वार्ताकार हैं रुचि अग्रवाल।
1: जैसा कि आप सभी लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं कि इंटरनेट आज के युग में एक आवश्यकता बन चुकी है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि जब हमें रिजल्ट देखने के लिए cbse.com खोलते हैं, और अगर हमें जॉब सर्चिंग करनी होती है तो naukri.com खोलते हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करना होता है तो google.com खोलते हैं। इंटरनेट पर कुछ भी लेने के लिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सुनिश्चित वेबसाइट की जरूरत होती है। जैसे कि khanakhazana.com पर आप रेसिपीज ले सकते हैं, amarujala.com पर आप न्यूज ले सकते हैं। वेबसाइट्स को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट आपस में कनेक्टेड वेब पेजेस का एक ग्रुप होता है, जो कि किसी भी पर्सन, किसी भी ग्रुप या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिजाइन होता है। वेब पेजेस का ये ग्रुप एक सर्वर में सेव होता है। सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। हर वेबसाइट का एक अपना अलग सर्वर होता है, और वेब पेजेस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके बना होता है। HTML एक लैंग्वेज होती है जो बेसिकली वेब पेज डिजाइन करने में यूज होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। मल्टीमीडिया शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है मल्टी और दूसरा है मीडिया। मल्टी का अर्थ होता है एक से अधिक, और मीडिया का अर्थ होता है एक ऐसा माध्यम जिससे हमें भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मीन्स वेबसाइट कलेक्शन होती है ऑडियो, वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, इमेजेस, एनिमेशन, हाइपरलिंक्स आदि का। हाइपरलिंक एक ऐसा शब्द या एक ऐसी ग्राफिक्स होती है जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा पेज या कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन होता है। हाइपरलिंक की एक पहचान है कि जब भी कोई शब्द या इमेज हाइपरलिंक होती है तो उन पर माउस का एरो का सिंबल हैंड यानी कि हाथ में चेंज हो जाता है। किसी भी वेबसाइट को एक सॉफ्टवेयर के द्वारा एक्सेस किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउजर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर के बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। वेबसाइट की एक दुनिया में एक टर्म आता है होम पेज। ये होम पेज क्या है? किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलने पर जो भी फर्स्ट पेज आता है, उस फर्स्ट पेज को उस पर्टिकुलर वेबसाइट का होम पेज कहते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट के टाइप्स की। वेबसाइट को अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो बेसिस पर कैटेगराइज होती हैं। अगर वेबसाइट्स को कंटेंट के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाए तो हम कह सकते हैं वेबसाइट कई प्रकार की होती हैं। पहली टाइप है सर्च इंजन साइट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, उसे सर्च इंजन साइट कहते हैं, जिसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है google.com। दूसरी प्रकार की वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट साइट, एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप कंपनीज की करंट जॉब ओपनिंग देख सकते हैं, जैसे कि naukri.com, monster.com। ऐसी वेबसाइट आपको अपना रिज्यूमे लोड करने का भी ऑप्शन देती हैं। तीसरी प्रकार की साइट है कॉमर्शियल या ई कॉमर्स साइट जिसको बोलते हैं, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जहां से आप सामान परचेज कर सकते हैं। इन वेबसाइट से आप सामान का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से या फिर किसी और मीडियम से भी कर सकते हैं। चौथी प्रकार की वेबसाइट है जो कि आजकल बहुत ही पॉपुलर है, ब्लॉग साइट, जिसका दूसरा नाम है वेबलॉग। ऐसी वेबसाइट जिस पर आप ऑनलाइन डायरीज मेंटेन कर सकते हैं, इस प्रकार की वेबसाइट को ब्लॉग वेबसाइट कहते हैं। ब्लॉग साइट पर हम किसी भी पर्सन के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगली वेबसाइट है कम्युनिटी साइट, ऐसी वेबसाइट जिस पर सेम एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाले पर्सन के साथ मैसेज बोर्ड या चैटिंग के थ्रू आप डिस्कशन कर सकते हैं, इस तरह की साइट को कम्युनिटी साइट कहेंगे। अगली है डेवलपमेंट साइट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जिसका उद्देश्य होता है यूजर को डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज के बारे में बताना। न्यूज

0: एक ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में जिस वेबसाइट पर आपको न्यूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वेबसाइट है डाउनलोड साइट। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, एक ऐसी वेबसाइट जहां से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, मीन्स सॉफ्टवेयर, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स आती हैं डाउनलोड साइट में। डाउनलोड का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर से कॉपी करके अपने कंप्यूटर पर सेव करना। अगली प्रकार की वेबसाइट है कॉर्पोरेट वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिस पर आपको बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, इस तरह की वेबसाइट को कहेंगे कॉर्पोरेट वेबसाइट। अगली प्रकार की वेबसाइट है वेड साइट। ऐसी साइट जो मैरिज आदि से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इस तरह की वेबसाइट को हम कहेंगे वेड साइट। नेक्स्ट है रिव्यू साइट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जहां पर लोग अपने व्यूज, मीन्स अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स को हम कहते हैं रिव्यू साइट। अगली प्रकार की कैटेगरी है या अगली प्रकार का कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जब हम वेबसाइट को कैटेगराइज करते हैं तो ये तीन प्रकार की वेबसाइट्स होती हैं। पहली पर्सनल वेबसाइट्स, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा डिजाइन की जाती है और ऐसी साइट पर आप डेवलपर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दूसरी प्रकार की वेबसाइट है बिजनेस वेबसाइट। वह वेबसाइट जिससे आप कुछ सामान परचेज कर सकते हैं और उस सामान का पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, जैसे कि पहला भी बताया क्रेडिट कार्ड या किसी और माध्यम से भी पे कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं बिजनेस वेबसाइट्स। तीसरी प्रकार की वेबसाइट है एक गवर्नमेंट वेबसाइट, यानी कि एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स को हम कहते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को वेबसाइट्स के बारे में कुछ जानकारी दी जो कि आप सभी के लिए बहुत ही सहायक होगी।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान वार्ता, वेबसाइट्स की दुनिया। वार्ताकार थी रुचि अग्रवाल। और आइए आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शर्मली खुलगड़ी और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में अय्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसी गीत के साथ ही युववाणी कार्यक्रम से अब मुझे यानी अरविंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप युवा साथियों का कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्येक

0: अपहरण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज संध्या 6:15 पर किसान श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण, जिसमें चर्चा के विषय होंगे पशुओं में टीकाकरण और गर्मियों में पशु प्रबंधन। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे जानकारी गर्मियों में पशुओं के रोग और बचाव संबंधी। जानकारी देंगे डॉक्टर राम सागर और इनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र सिंह। संध्या 6:45 पर संध्या वंदन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक, जिसमें ब्रज काव्य सुधा के क्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज भाषा काव्य पाठ। कवित्री होंगी पूनम शर्मा।

संध्या 7:31 पर श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम शाम सहनी आप सुन सकेंगे। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 8:20 पर देश गान और रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तरहने आप सुन सकेंगे। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम नौटंकी, कुदरत की मार बचे कैसे। आलेख होगा विजेंद्र सिंह वर्मा, प्रतिभागी कलाकार होंगे ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश सिंह सिसोदिया, नसीम बनो उर्फ लता रानी, श्रीमती जाफरी, होतीलाल, रामहित, धारा खान, ताराचंद प्रेमी, गणपत लाल। संगत कलाकार होंगे हारमोनियम पर सूरज पाल, नक्कारा पर सतवीर सिंह और ढोलक पर संगति करेंगे राजेश खन्ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे ब्रज कला केंद्र मथुरा। प्रसारण समय याद रखिएगा रात्रि 10 बजे। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिमसल डॉक्टर में इस गुरुवार 14 मई को दोपहर 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग, कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।

सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा व्हाट्सएप नंबर 9412225575 पर संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में सहभागिता कर सकते हैं और किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन करने से पहले मथुरा से बाहर की श्रोता 05565 को अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 14 मई 2026, समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:10 हुए हैं। समय हो रहा है देशगान का। आइए सुनते हैं संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना। रचना है चंद्रदत्त इंदु की।

0: संवेद स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं ममता रानी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। और भैया देखो खूब भाईटो पड़ रहा है, गर्मी खूब पड़ रही है और अपन ने तो देखो गर्मी लग रही है। अपने पशुअन ने तो देखो उन्होंने खूब गर्मी लगे, पर उनको बचाव और ध्यान इंतजाम हमें ही आप ये करनो है ना। जो पशु गर्मी से बचे रहें उनको बचाव हमें करना है। हमारे जो पशुपालक भैया हैं, किसान भैया हैं, उन जा समय अपने पशुअन को हरा चारो खिलाएं दो टाइम। जामे का होवे हरे चारे में पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में होवे है और बामे सगरे पोषक तत्व तो होते हैं, जाते पशु जो है का स्वस्थ रहते और पशु गर्मी ते बचो रहते। घाम ते बचावे के लिए घर में ही अपने पशु को पशुशाला में बांधो भैया। और जो टाट और जो बोरी हो तो कहें वहाँ पानी में भिजो एक नहीं है, बाहर टांग दो जैसे सीरी सीरी ब्यार अपने पशु को लगे है। पंखा चलाए दो और पशु को है का 10 बजे के बाद खुले में बाहर मत छोड़ियो और वाकू छाए में पानी रख दो। जाते जब बाय प्यास लगे एक दो टाइम अपनो पीतो रहे, एक बार वाकू नहाए दो। जाते वा में जुए और कलीली हैं बातें वो बचो रहेगो। भैया देखो हम तो ये कहें कि अपने पशु को आप पूरा ध्यान रखो, अपनों रखो, क्योंकि पशु लाखन को आवे। अब जब लाखन को पशु आवे तो पतो है गर्मी भाईटे में हर समय वहाँ को हमें ध्यान रखना पड़े। और देखो गर्मी तो खूब तप रही है और दोपहर की गर्मी को तो कहा कहनो है और ऐसो आनंद आ जाएगा और तपनते बच जावेंगे। सुने आशु रावत को गायो भयो ये लोकगीत, गर्मी में तपती धूप पड़ रही दोपहरी में।

आशु रावत को गाए हुए हो, सुनो ये लोकगीत। अरे टीक दोपहरी से तो बच लियो भैया, खुदा बच लियो, अपने पशु जे अंग्रेन ने बचा लियो। अगर तो कछु परेशानी समस्या बन जाए पशुअन के संग, तो बतोए फिर डॉक्टर ही जाको उपचार।

0: कर सकते हैं जो विशेषज्ञ हैं, तो उन विशेषज्ञ की जानकारी सुन लेते हैं ना, जो गर्मी में पशुओं की रोग और बिनती कैसे बचो जाए। डॉक्टर राम सागर से बीरेन सिंह की बातचीत सुन लेते हैं। भैया सुनो,
1: डॉक्टर साहब, राम राम साहब।
2: राम राम भाई साहब, बिरेन भाई साहब, राम राम।
1: कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम जो है, हालांकि अब थोड़ी सी दो चार दिन ये बूंदाबांद हैगी, बरसात सी हैगी, जाते ने थोड़ा सा टेम्परेचर जो है डाउन है वो है। तो यह समय पे जो है पशु में कौन कौन सी ऐसी बीमारी है वे की जो आशंका है?
2: बिरेन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, गर्मियों में प्राय पशुओं में तरह तरह की बीमारियां बसंत ऋतु के खत्म होने के बाद गर्मी ऋतु आती है।
1: जी,
2: चारे की, हरे चारे की प्रचुर मात्रा होती है, पानी की कमी होती है। इस मौसम में गर्मी, लू, तापक्रम बढ़ता है। इसमें पशुओं में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन तथा और लू संबंधी सन स्ट्रोक, लू हीट स्ट्रोक, इस तरह की बीमारियां होती हैं। साथ में किसान भाइयों को ध्यान रखने की जरूरत है कि गर्मियों में दूध घटने लगता है।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि दूध घटने का ये कारण हरा चारा की प्राप्ति नहीं होती है, और पशु दिन में लूप में, चारे में, धूप में रहता है तो शरीर से पानी की मात्रा स्वेटिंग या ऑपरेशन उत्सर्जन से निकल जाता है।
1: बिल्कुल,
2: तो पशुपालक ये नहीं समझ पाता कि पानी, दूध क्यों घट रहा है, और वो उतना पानी पिलाने का और नहलाने का ध्यान नहीं रखता है। चाहे और समय समय पर पानी पिलाएं, पशुओं को छायादार वृक्ष
1: के दस्त हो जाए, पशु हमारा उठे बैठे बार बार और उसको दर्द जैसा महसूस हो, तो वह समय पे हम जो है कहा पाए कर जाते हैं हमारा पशु स्वस्थ रहे। वहाँ
2: ऐसा करें, आप पेट के कीड़े की दवा खिलाएं, फेंडी काइंड प्लस, जिसमें आइवरमेक्टिस और एल्बेंडाजॉल हो, 10 mg 50 किलो के पड्ढे को खिलाएं। ये मान लीजिए करीब करीब 80 किलो 100 किलो के बीच में होगा पड्ढा। गोली दे दें, न मिले तो 10 mg की दो गोली दे दें।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर करके हमारे किसान भैया जी पूछते रहेंगे, अगर पशु के शरीर में खुजली है जाए, ये हमारो लवार हो या कोई गाय भैंस है, तो वाक्य काज हमें कहा करना चाहिए?
2: फेंडिकाइन प्लस 3 ग्राम की आती है, तो उसका छठवां हिस्सा करीब करीब उसको खिला दें, और साथ में नीम के पत्ते उबालें, उबाल लें अच्छे से, और फिटकरी थोड़ी डाल दें, और उसको गुनगुने पानी से पूरे पड्ढे को रगड़ रगड़ के नहलाएं, एंटी इन्फेक्टिव या एंटीसेप्टिक का काम हो जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि उसी के पड्ढे का खून निकालें, 15 ml 10 ml सब दो बार मांस में लगाएं, उससे ऑटो इम्यून होगा और प्रतिरोधक क्षमता बनेगी, खुजली के अगेंस्ट प्रोटीन नेचर से एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी। तीन काम करने हैं आपको, सुबह शाम एविल की दो दो तीन तीन गोलियां सुबह शाम 3-4 दिन देते रहिए, खुजली से आपको निजात मिल जाएगा।
1: बिल्कुल,
2: आप आयरमेक्टिन की गोली आती है 10 mg की दो गोली खिला दें, और लीवर टॉनिक भी साथ देते रहे ताकि भूख ना कम हो, फिर उसी का खून की नस से खून 10-15 ml निकाल के मांस में लगा दें, हफ्ते में 2 बार करें, और फिटकरी नीम के पत्ते उबाल करें, ठंडे कर उनको नहलाएं अच्छे से, और एविल की दो गोली सुबह शाम दें।
1: बिल्कुल,
2: तो इसी तरह पशुपालक को जब कलीली अलीली हो जाए गर्मियों में, तो कलीलियों की दवा के लिए ब्यूटॉक्स साइपरमेथ्रिन नाम की दवा पूरे शरीर में 5 ml 1 लीटर के अनुपात में पोत दें, और मुछिका लगा दें, ताकि जितने नेचुरल प्राकृतिक छिद्र हैं उनमें चाटने ना पाए, पेशाब की जगह में जाने ना पाए, मल द्वार में न जाने पाए, और आधा घंटा करीब लगी रहने दे, फिर ताजे पानी से बोरे से रगड़ रगड़ के नहला दे। नहलाते समय ध्यान रखें कि वहां बांधे जहां वो पशु बंधता हो, ताकि कलीलियों के, जू के, लाइस के अंडे बच्चे, वो भी जो नीचे हो, लार्वा हो, वो सब मर जाएंगे।
1: बिल्कुल, पानी टपकते हैं,
2: पानी की दवा से असर है, और 1 हफ्ता करीब वहां उस जगह न बांधे, ताकि वो अच्छे से असर, कहीं दवा, वो दवा मिली मिट्टी, दवा मिली पानी, चाट लिया पशु ने, तो नुकसान हो सकता है।
1: बिल्कुल,
2: दूसरा ये ध्यान रखना जरूरत है कि ये रेवड़ जो बकरियों का, भेड़ों का होता है, गर्मियों में चराए निकल जाते हैं ज्यादातर भरतपुर राजस्थान के लोग, पूरे बरसात से लेके मई में आते आते पानी की मात्रा कम हो जाती है, और उसमें परजीवी तरह तरह के अंडे, लार्वा रहते हैं, जो भेड़ बकरियों के पेट में, गायों के पेट में, पशुओं के पेट में जाकर के अंतर परजीवी, वो तरह तरह के विकार, गैस्ट्राइटिस, लीवर की बीमारी आदि उत्पन्न करते हैं, जैसे डायरिया,
1: बिल्कुल,
2: दस्त, और यकृत की बीमारियां होती हैं, लीवर की बीमारियां होती हैं, जो फैसुलोप्सिस कहते हैं, उन बीमारियों को पैदा करते हैं, जैसे गले में सूजन आ जाना, भूख न लगना, पतले दस्त होना, एनीमिक हो जाना, गायों के रूमन के, जानवरों के चौथे पेट रूमन में जो होमेबेजम में हिमोंकस नाम के कीटाणु

0: परजीवी खून कुछ उठते हैं, इनके टॉयलेट खून कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है और धीरे धीरे करके मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में रुका हुआ पानी न पिलाएं, ताजा हैंडपंप पानी, साफ पानी पिलाएं,
1: बिल्कुल,
0: इससे कीटाणुओं का, परजीवियों का परिवहन या रोकथाम हो सके।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि अब जैसे गर्मी आगे को और फिर बढ़ेगी, चूंकि अभी तो मई है, फिर
0: हाँ,
1: जून पड़ी है
0: जून
1: पूरी।
0: में और पड़ेगी तो ऊपर नीचे होता है, ठंडा गर्म होता है, तो कीटाणुओं के बढ़ोतरी होता है, नमी, जैसे समय मौसम में नमी है, किसी चीज को बढ़ने के लिए हवा पानी तापक्रम चाहिए, हवा पानी तापक्रम तीनों चीजों से अनुकूल है। तो जब नमी रहेगी तो कीटाणु विषाणु वायरस जीवाणु सब बढ़ते हैं, जो बढ़ते हैं तो पशुओं में संक्रमण करते हैं। ऐसी दशा में आदमी को पशुओं को संक्रमण से बचाना है।
1: जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने संक्रमण की बात करी, तो संक्रमण कौन कौन से ऐसे रोग हैं जाते फैलें और हमारे पशु ने प्रभावित करें और पशु ने जो है तरह तरह की बीमारी के काजे ग्रसित करें, संग ही और कौन से रोग ऐसे पैदा हो जाएं जो संक्रमण से जो है फैलें?
0: सूजन आ जाना, भूख न लगना, पतले दस्त होना, एनीमिक हो जाना, गायों के रूमन के जानवरों के चौथे पेट रूमन में जो जब में हिमोंकस नाम के कीटाणु परजीवी खून कुछ उठते हैं, इनके टॉयलेट खून कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी दशा में रुका हुआ पानी न पिलाएं, ताजा हैंडपंप पानी, साफ पानी पिलाएं,
1: बिल्कुल,
0: इससे कीटाणुओं का, परजीवियों का परिवहन या रोकथाम हो सके।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि अब जैसे गर्मी आगे को और फिर बढ़ेगी, चूंकि अभी तो मई है, फिर जून पड़ी है पूरी,
0: जून में और पड़ेगी तो लू की मात्रा और बढ़ेगी।
1: बढ़ेगी।
0: मौसम जब कभी फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, ठंडा गर्म होता है,
1: हाँ।
0: तो कीटाणुओं के बढ़ोतरी होता है, नमी, जैसे समय मौसम में नमी है, किसी चीज को बढ़ने के लिए हवा पानी तापक्रम चाहिए, हवा पानी तापक्रम तीनों चीजों से अनुकूल है। तो जब नमी रहेगी तो कीटाणु विषाणु वायरस जीवाणु सब बढ़ते हैं, जो बढ़ते हैं तो पशुओं में संक्रमण करते हैं। ऐसी दशा में आदमी को पशुओं को संक्रमण से बचाना है। एक और दिक्कत आ रही है, गर्मियों में प्रायः किसान भाई हरा चारा तो मिलता नहीं है, तो ये भूसा जो नया भूसा आया है ये डाल देते पानी में घोल के, पता लगा किसी जानवर को पेट अपचन हो रही है, किसी गोबर नहीं कर रहा है, कहीं पेट जाम हो गया है, तो जो नया भूसा आया उसकी पाचन क्षमता कम है, देर में पचता है। तो ऐसे ऐसी जगह स्थिति में भूसे को भिगो कर खिलाएं, ताकि पानी की मात्रा ज्यादा रहे और उसको पचाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पानी में से सुबह भिगो दिया, रातिब डाल दिया, चून डाल दिया या बाजरे उसका जौ का आटा डाल दिया और भीगा रहे दे घंटे दो घंटे, फिर उसके बाद खिलाए, जिससे कि पानी की मात्रा के कारण वो गल जाएगा, थोड़ा पच जाएगा, थोड़ा मुलायम हो जाएगा और पशु को पचाने में पेट में दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा हो जाए कि पहलवान हमारी गाय हो या भैंस हो, भाई जब हम ज्ञापन करवा भी ले जाएं तो वो रुके ना, ये कहा कारण है?
0: उसको साइक्लोमिन सेवन नाम की 20 गोली ले लो, एक गोली डेली खिलाइए और एग्रीमिन फोर्ट, एक पाउडर आता है एग्रीमिन फोर्ट जिसमें मिनरल मिक्सचर हो, ये 150 ग्राम रोज खिलाओ। और तब गर्मी पे आ जाए तो गायना रिच नाम का एक इंजेक्शन 3 ml का लगवा के तब बीज डलवाना, नेचुरल सर्विस कराना या कृत्रिम गर्भाधान कराना। यह ध्यान रखिए कि इसके बावजूद हीट पे ना आए, गर्मी पे ना आए, तो नजदीक पशु चिकित्सालय जाकर के उसकी बच्चादानी चेक कराओ, कहीं छोटी तो नहीं है, अंडाशय छोटे तो नहीं है, अंडवाहिनी कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यदि आप नहीं चेक कराएंगे तो आप या धैर्य में तीर जैसा है कि अगर बच्चादानी में कोई कमी है तो आप खिला रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, किसान आदमी का पैसे का नुकसान होता रहेगा और बीमारी कोई दूसरी निकलेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे कछु किसान भैया जो नए नए पशुपालन करें, उन्हें एक बात की जानकारी नहीं आ रही है कि हमारा जो मादा पशु है कितनी उम्र पे जाए कि जो है गर्भाधान के साथ तैयार हो जाए?
0: 2.5 साल और 3 साल में गर्मी पे आके, 3 साल में, 3 साल तक उसको गर्मी पे आके और गर्भ ठहरना चाहिए, गर्भधारण होना चाहिए, जिससे कि उसके समय समय पर उससे बच्चे का उत्पादन, दूध का उत्पादन समय से 3-4 पोत ब्याह जाए वो। अगर वो 4 साल तक ऐसे ठल चराता रहेगा तो किसान भाई का तो आर्थिक नुकसान होता रहेगा, उस चराने से फायदा क्या, इस महंगे जमाने में कितना चराएगा आदमी?
1: बिल्कुल।
0: तो किसान भाइयों को यह ध्यान रखना पड़ेगा, 2.5 साल के बाद हीट पे नहीं आती है, गर्मी पे नहीं आती है, नजदीक पशु चिकित्सालय जाकर को चेक कराएं।
1: किसान भैयाओं, गर्मी की रोग और उनके बचाव या विषय पे अभी हमारे डॉक्टर साहब राम सागर जो वेटनरी से पधारे अभी आपको जानकारी दे रहे। उम्मीद है कि आप यह

0: गाइड जरूर लाभान्वित होंगे और डॉक्टर साहब की बातों पर गौर करके अपने पशुओं को स्वास्थ्य सही रखेंगे।
1: गर्मियों में पशुओं के रोग और बचाव, डॉक्टर राम सागर से बीरेन सिंह की बातचीत भैया आपने सुनी। तो ये जो हमारे किसान भैयन पशुपालकन भैयन के लिए जानकारी दी बहुत ही लाभदायक थी भैया। हम तो आपसे ये कहें कि हर जानकारी को आप जरूर लाभ ले में हैं, ताकि आपके जो पशु हैं जेंगरे हैं जहाँ समय बचे रहेंगे गर्मी से, अगर उनको कोई परेशानी है तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, विशेषज्ञ ने बताई, और पास के पशु चिकित्सालय में आप तुरंत जाके इलाज जरूर करियो, क्योंकि पशु बड़ो ही कीमती आरो है और वहाँ को बड़ो ध्यान रखना है आपको। और गर्मी में आप कबू ऐसा तो कर दो कि पशुओं ने पेड़ के नीचे दोपहरी पड़ रही है बंधे छोड़ दे तो है कि ना, तो दोपहर के समय मत बांधो, 10 बजे के बाद पशुओं ने अंदर रखो। और जैसे कहूँ हम जा रहे हैं भैया, तो रास्ता में अगर कहूँ पेड़ दिख जाए ना तो बड़ी राहत मिले, सीरो सीरो पानी पी लें, नेक देर सस्ताए लिए तो आगे फिर गैलू पकड़ लिए। और भैया गामन में तो ऐसे ही गैल हम चलते हैं, और फिर बाकी छाए में फिर आनंद आवत है भैया। तो सुने हैं ऐसो ही लोकगीत भीष्म नारायण सिंह को गायो भयो, बैठ कदम की छैया।

भीष्म नारायण सिंह को गायो हुए सुनो भैया लोकगीत। अरे पेड़ पौधन बिना तो कछु भी ना है जीवन में। तो ऐसे ही खाइवे पीवे की बात करते हैं हम कि जो रखो भयो भोजन है, बासी भोजन है, बाको भैया आप बिल्कुल आपके परिवार में काऊ को सेवन मत करन दियो। और जब भी आप भोजन करें हाथ पैर मुँह अच्छी तरह से साफ करके और अपने बालकन को भी ऐसी ही आदत डालो। और बाहर के खुले हुए कटे हुए जो फल हैं, खान पान हैं, बातें आप परहेज रखो, घर को सुपाच्य हल्को भोजन ही करो। जैसा मैं देखो भैया हमारी बहनें घर में बना रही हैं, जैसे पुदीना की चटनी है, टमाटर की चटनी है, और आपको अमिया को पनो है, और पत्तादार सब्जी है, लौकी की सब्जी है, इनको प्रतिदिन अगर आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत राहत और हकाए गर्मी से बचाव महसूस होएगा। और दही मठा छाछ को सेवन तो हमारे भैया खूब करे हैं और करते रहो। बस मौसम के अनुसार बचाव करो, समय के अनुसार चलते रहो। अब बात कर रहे हैं मौसम की जानकारी की, तो जो आवे बारे मौसम है वो अधिकतम तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान आपको 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और भैया आपसे हम तो ये कहें कि जो जैसे जब तेज़ हवा आंधी आपको दिखाई दे रही है, तेज़ हवा चल रही है, बास समय अपने खेतन में आप सिंचाई को कार्य मत करो, बाकू रोक दो। जब हल्को है जाए, हवा कम है जाए, तभी आप खेतन में सिंचाई को कार्य करो और कार्य भी करो। और भैया जा समय आपके देखो किसान भैयान के खेतों खाली पड़े हुए हैं, तो बाको जा समय को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये है कि खेतन में गहरी जुताई कर दो। तो गहरी जुताई से भैया ये होगा कि आपकी ज़मीन के अंदर जो छिपे हुए हानिकारक कीट हैं, रोग हैं, अंडा हैं, लार्वा हैं उनके, और जो है क्या है वो नष्ट है जाएंगे। और जो खरपतवार उगे आमते हैं ना उन दिनन में फसल उतकाए, तो बाकी बीज रह जामते हैं, तो वो बीज फिर आए आपके खरपतवार रुक के आपकी फसल को है क्या नुकसान करे हैं। तो जाले भैया आप जा समय गहरी जुताई करेंगे तो तेज़ जो किरणें पड़ेंगी सूरज की जा समय सीधी, तो वो नष्ट है जाएंगे और आपकी फसल जो आगे अच्छी होगी, आपकी मृदा स्वस्थ बनी रहेगी और उत्पादन तो निश्चित ही भैया आपको बढ़िया ही मिलेगा। हम तो ये कहेंगे कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी खेती पशुपालन के कार्यों को अच्छी प्रकार से करते रहो। बस यही बात के संग अब आज को जो हमारा कार्यक्रम है ना वो है ब्रज ग्रामीण। अब हमारे घड़ी की सुई ने भी हमसे कह दी है कि कार्यक्रम को यहीं पे कर रहे हैं संपन्न। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे राजेश के स्वर में बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म से ये भक्ति रचना। संध्या वंदन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं आलाप फिल्म से। स्वर हैं लता मंगेशकर और दिलराज कौर के, रचना है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, संगीत निर्देशन जयदेव का है।

लता मंगेशकर और दिलराज कौर की सुरों में अभी आप सुन रहे थे आलाप फिल्म से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की है भक्ति रचना, संगीत जयदेव का था। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं संजीव अभ्यंकर और साथियों के सुरों में दशावतार फिल्म से ये भक्ति रचना।

संजीव अभ्यंकर और साथियों के सुरों में अभी आप सुन रहे थे दशावतार फिल्म से ये रचना। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। सुर है यशोदास का चिंतामणि सूरदास फिल्म के लिए संत सूरदास की रचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संगीत निर्देशन रविंद्र जैन का है।

अभी आप सुन रहे थे यशुदास के स्वर में चिंतामणि सूरदास फिल्म से संत सूरदास की रचना। इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक। आज इस कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा के क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ब्रज भाषा काव्य पाठ। कवित्री हैं पूनम शर्मा।
2: जय जय श्री राधे सबन को। और मैं कछु पंक्ति पढ़ना चाहूं।

अभी आप सुन रहे थे पूनम शर्मा से ब्रजभाषा काव्य पाठ। इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। जीवन कठिन

प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2,441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2,900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2,410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8,780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों

0: आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2,461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति

प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है शाम के 7:31 और इसी के साथ
2: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी।

सुनहरे शाम के सुरीले रंग और आपके अपने संदेशों के संग लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कुमार। श्रोताओं, अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर सजाएंगे संगीत की एक ऐसी महफिल जहां होंगे आपके व्हाट्सएप संदेश, आपकी फरमाइशें और कुछ गीत। दिन भर की भागदौड़ और थकान को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वक्त है दिल को सुकून देने वाली धुनों में खो जाने का। किसी ने अपने दोस्त के लिए गीत भेजा है, किसी ने अपने जीवन साथी के नाम पैगाम लिखा है, तो कहीं यादों की खुशबू लिए आए हैं पुराने नगमे। तो श्रोताओ, अपने दिल की धड़कनों को सुरों से जोड़ लीजिए और तैयार हो जाइए एक खूबसूरत संगीत यात्रा के लिए। शुरुआत करते हैं आज के पहले फरमाइशी गीत से, जो हमें बहुत सारे श्रोताओं ने संदेश भेजा है इस गीत को सुनने के लिए। आइए सबसे पहले ये गीत सुनते हैं और उसके बाद बताएंगे कि इस गीत को सुनने के लिए हमारे किन श्रोताओं ने अपना संदेश भेजा है।

तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमराही फिल्म का ये गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई थी। और अब आपको बताते हैं कि इस गीत को सुनने के लिए जो संदेश हमें प्राप्त हुए हैं उनके नाम। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप। सरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कृष्टि पटवा। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष। दुर्गा कॉलोनी हाची से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू टप्पू। कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका सुशांत और सुरेश चौरसिया। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी और उनके ढेर सारे साथीगण। भावी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम कोंदली, वैष्णवी ऊंचा, युवराज कोंदली। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी सुरलकर। गांव हंडीखेड़ा से सिरसा के श्रोता राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। संबलपुर कांकेर से फागु राम यादव और ज्योति यादव। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा। सहरसा बिहार से जुड़े हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय ओम, गुंजेश रिया, कुमकुम, अक्षय लाल और बुल्की वाली फलना झा। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर नाजियाफ, इब्राहिम सद्दाम, हदीन हसन सहारनपुर से। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी सौरभ, साइना और निवान शर्मा। इश्क की डोर जब दिल से जुड़ जाए तो जिंदगी भी रंगीन पतंग की आसमां में लहराने लगती है। चुलबुले अंदाज, मस्ती भरी धुन और प्यार की मीठी नोक झोंक से सजा एक ऐसा गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं

किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे रागिनी फिल्म के लिए। विश्वास चौधरी, संजय चौधरी, महिमा चौधरी राया मथुरा से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। गोपी निकी नगरिया मथुरा से मिठन लाल सरस्वत, नेहा जैन, नीरज, निकेता और इनके परिवारीजन। नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण भोला, नमन और इनके परिवारीजन। नौधरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा। कुमोद वन मथुरा से है जुड़े हैं रमेश चंद्र सेन, सुनील, रचना, गब्बर और इनके परिवारीजन। भरतपुर राजस्थान से हाउसिंग बोर्ड के श्रोता अजीत, सोनिया, शिवांश और चुन्ना लाल। जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और रानू। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांकन, रोशनलाल देवांकन, हेमलता और डिंपल देवांकन। गंजडुनवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी और रियाज अयाज अंसारी। गांव लोहगढ़ से स्वर्ण

गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। बागपत से ममता ढिंगिया और कुणाल ढिंगिया। एसएम जावेद, शगुप्तांजुम और नजमुल होदा झारखंड के श्रोता हैं। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरदीप, गुरकीरत, गुरशब्द और राहुल। नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा और शशांक वाघमारे। खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान, अब्दुल गफ्फार खत्री। जाफराबाद से कालेगांव के श्रोता सुधाकर राजू जाधव, प्रशांत राजू जाधव, संचित वायल, प्रथमेश सरवत, देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशोर रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले। हिसार हरियाणा से राजकुमार टूटी, प्रमोद कुमार टूटी, पुष्पेंद्र कुमार टूटी। नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफजल। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी और सुनीता साहनी का संदेश। महाराष्ट्र के श्रोता हैं अमरावती से, इन्होंने संदेश भेजा है। हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और इनके परिवारी चल। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, देवाश्री और वर्षा सुमन। हरिशंकर, सोनी, द्रौपदी रानी और इनके परिवारी चल। अंबिका आवास कॉलोनी बरेली उत्तर प्रदेश से इन्होंने संदेश भेजा है। हाथरस उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं राजुद्दीन खान, राकेश कुमार, भीकम सिंह, रविया, रिजवान, हुसैन बानो, मुमताज, फिरोज और अली हसन। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, सुशील येले। अकोला से अरुणा, बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। डेर पाटन गुजरात से धीरज बीर अभारी। मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाटली बेबी निशा और इनके परिवारीजन। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार। श्रोता, जिंदगी की राहें आसान तब लगने लगती हैं जब किसी अपने का साथ और विश्वास मिल जाए। प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि निभाए गए वादों में बसता है। इन्हीं भावनाओं को मधुर सुरों में ढाला है साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार रवि ने इस दिल की गहराइयों तक पहुंचा दिया है। फिल्म हमराज का ये अमर गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे अपने बुलंद और भावपूर्ण आवाज से सजाया है महेंद्र कपूर ने। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जहीर का लिखा हुआ यह गीत था, रवि ने संगीत तैयार किया था। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, खंडवा से विशाल सिंह, विवेक सिंह का संदेश। शिवपुरम कॉलोनी कमला मध्य प्रदेश से कमला देवी महोबिया, अनय अनाया और यीशु बाबा और इनके ढेर सारे साथीगण। दाढ़ी नादुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमोल बाठे का संदेश। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता और इनके पारिवारिक जन। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा और हर्ष आहूजा। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और इनके पारिवारिक जन। ततरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का संदेश। खंडवा मध्य प्रदेश से राजेश सेन, सुरेखा सेन और शुभम अक्षय। वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश सन्नी, जैमिन भावसार। बुंदेलखंड हमीरपुर के श्रोता हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्याक्षी। प्रोफेसर कॉलोनी मध्य प्रदेश के श्रोता खंडवा से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष विवेक, आयुषी। राजेंद्र कुमार, बलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवारिक जन। वाशी महाराष्ट्र से विठल सुरोसे, सुषमा सुरोशे, परिधि मायरा सुरोशे। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता केसुतासु, अर्णव सत्यमानंद, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुमारी, प्रियाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े और इनके परिवारिक जन। कलकत्ता के श्रोता हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शो, अजय कुमार, रिमी तनुषी, इनके साथ हैं अभय कुमार, सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शौ, जयप्रकाश सौ, बसंत लाल, हीरा मोती, पन्ना लाल सौ। सहारनपुर से आशा नारंग, सुरे सोनाली और सुरेश नारंग। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और इनके परिवारिक जन। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बाठोड़े, बोध बड़े, अनीता बोध बड़े और रमेश राव गाठोड़े। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का संदेश। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित, देविका गजेंद्र और हे अंश। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, कंचन कुसुम, जूली और जगदीश जौहरी। लगातार बहुत सारे श्रोतागण जुड़ते ही जा रहे हैं और बहुत सारे संदेश जिन्हें हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं, तो श्रोताओं से निवेदन करेंगे कि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़िए और बाकी जो प्रोग्राम भी हैं उन्हें आप सुनते रहें। जो श्रोतागण अपने पसंद के गीत नहीं सुन पाए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें आगे के कार्यक्रमों में प्रसारित करें। फिलहाल अब समय इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसको प्रोग्राम को समाप्त करने की मुझे यानी अरविंद को इजाजत देनी होगी। नमस्कार।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया।

0: क्या दीदी?
1: काम से नहीं।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ब्लफ मास्टर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत की अगली पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नरम गरम।

आशा भोसले की आवाज में नरम गरम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो रास्ते से। आनंद बख्शी का लिखा हुआ यह गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन, आवाज है मोहम्मद रफी की।

मोहम्मद रफी की आवाज में दो रास्ते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा हुआ एक गीत था जिसे संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं। सीआईडी फिल्म से गीतकार हेमजरो, संगीत ओपी नैयर, आवाज है शमशाद बेगम की।

0: शमशाद बेगम की आवाज़ में सीआईटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे मजरूह और संगीत ओपी नैयर का था। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना। इसी के साथ देशगान का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है।

आकाश वाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं आपका रेडियो दोस्त अरविंद कुमार। श्रोताओं, आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं प्रेम, त्याग, इंतजार और इंसानियत की अद्भुत दास्तां हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म वीर सारा। निर्देशक यश चोपड़ा की इस फिल्म में प्यार सरहदों से भी बड़ा दिखाई देता है। मुख्य भूमिकाओं में हैं शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं

और बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। श्रोताओं, कहानी शुरू होती है भारत के वायुसेना अधिकारी वीर प्रताप सिंह से, जो दिल के बेहद नेक और साहसी अंदाज के हैं। एक दिन उन्हें पाकिस्तान से आई एक लड़की जारा हयात खान मिलती है, जो अपने दादे की आखिरी इच्छा पूरी करने भारत आई होती है। एक दुर्घटना में वीर जारा की जान बचाते हैं और फिर शुरू होता है मुलाकातों का सिलसिला। धीरे धीरे दोनों के दिलों में प्यार जन्म लेने लगता है, लेकिन यह प्रेम आसान नहीं है श्रोताओं, क्योंकि दोनों अलग देशों और अलग संस्कृतियों से जुड़े थे। आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का पहला सुपरहिट गीत, जिसमें प्रेम की मासूम खुशबू है।

श्रोताओं, वीर जारा को अपने पंजाब स्थित गांव लेकर आते हैं। वहीं जारा पहली बार भारतीय परिवार की आत्मीयता और अपनापन महसूस करती है। वीर के घर की सादगी, खेतों की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट जारा के दिल को छू जाती है। लेकिन पाकिस्तान लौटने के बाद जारा के सामने परिवार और समाज की बंदिशें खड़ी हो जाती हैं। उसकी सगाई पहले से तय होती है, उधर वीर अपने प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, मगर हालात ऐसा मोड़ लेते हैं कि उन पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजने के लिए विवश किया जाता है। वीर अपनी पहचान

तक छुपा लेते हैं ताकि जारा की इज्जत पर कोई आंच ना आए। 22 वर्षों तक वीर पाकिस्तान की जेल में कैद रहते हैं। अब हम आपको उस गीत को सुनवाने वाले हैं इस कार्यक्रम में जो बेहद भावुक और लोकप्रिय गीत भी अपने समय का रहा है, उदित नारायण की आवाज में, जावेद अख्तर का लिखा हुआ।

श्रोताओं, जब वीर को पाकिस्तान की जेल में कैद कर दिया जाता है तो कहानी में नया मोड़ आ जाता है, जब पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी वीर का केस लड़ने का फैसला करती है। धीरे धीरे उन्हें वीर और जारा की अधूरी प्रेम कथा का सच पता चलता है। सामिया जारा को ढूंढ निकालती है, तब पता चलता है कि जारा ने भी वीर के प्रेम में अपना सब कुछ छोड़ दिया था और भारत में वीर के परिवार के साथ रह रही थी। आखिरकार अदालत में सच सामने आता है, वीर को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया जाता है और वर्षों बाद दोनों प्रेमी एक हो जाते हैं। श्रोताओं, ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि दो देशों के बीच इंसानियत और मोहब्बत का संदेश भी है। और अब बारी है फिल्म के उस गीत की जो आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है।

तो श्रोताओं, ये थी वीर जारा की अमर प्रेम गाथा। एक ऐसा प्रेम जो सरहदों, समय और परिस्थितियों से भी बड़ा साबित हुआ। फिल्म के संगीतकार थे मदन मोहन, जिनकी धुनों को नए अंदाज में प्रस्तुत किया संजीव कोहली ने, और गीतों को अपनी कलम से सजाया जावेद अख्तर ने। आवाजें थी लता मंगेशकर, रूप कुमार राठौर, उदित नारायण और सोनू निगम की। इसी के साथ एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ
2: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर

0: छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव

0: पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit,
2: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने

0: पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
2: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कफील आजर का लिखा हुआ यह गीत। कर्तव्य फिल्म का गीत था जिसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, लोक धुनों की मिट्टी की सौंधी खुशबू और मेले की

रंग बिरंगी चहल पहल जब हिंदी फिल्म संगीत में घुल जाती है, तब जन्म लेते हैं ऐसे गीत जो बरसों तक होठों पर थिरकते रहते हैं। प्रस्तुत है फिल्म चोर मचाए शोर का एक बेहद चंचल और लोकप्रिय गीत। इस गीत में ग्रामीण संस्कृति की मिठास, लोक नृत्य की उमंग और मेले की रौनक को बड़े ही सुंदर अंदाज में पिरोया है संगीतकार एवं गीतकार रविंद्र जैन ने। आवाज है आशा भोसले की।

आशा भोसले की आवाज में ये मधुर गीत सुना आपने चोर मचाए शोर फिल्म से। गीत और संगीत रविंद्र जैन के थे। श्रोताओं, कभी कभी प्रेम का सबसे सुंदर रूप शब्दों में नहीं बल्कि किसी मधुर गीत की नरम छाओं में महसूस होता है। एक ऐसा ही कोमल, भावपूर्ण और दिल को सुकून देने वाला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म चोर, क्षमा करें, फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। अपनी मधुर आवाज से इस गीत को सजाया है हेमलता ने और गीत और संगीत की अनुपम रचना की है रविंद्र जैन ने।

तो श्रोताओं, सुरों और यादों से सजी आज की ये सुहाने तराने की महफिल यहीं सिमटती है। उम्मीद है ये मधुर गीत आपके मन को छू गए होंगे और आपके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए होंगे। इसी के साथ सुहाने तराने कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र का कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: चर्चा का विषय है।
1: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल

0: की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और किसी भी

0: अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहां खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे। और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है, ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है।
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, इराक, इनके लिए आवश्यक होता है भारत अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पर जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से

से तो भोगती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का। तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो

0: को ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो 1 पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहां पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में अभी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो

0: कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा यह मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है, और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री के ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है

0: लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है। लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रखकर चलना है। लेकिन के साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश

0: का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते। और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा। और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं, या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है। और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम नौटंकी, कुदरत की मार बचे कैसे। आलेख विजेंद्र सिंह वर्मा का है। प्रतिभागी कलाकार हैं ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश सिंह सिसोदिया, नसीम बानो उर्फ लता रानी, श्रीमती जाफरी, होतीलाल, रामहित, धारा खान, ताराचंद प्रेमी, गणपत लाल। हारमोनियम पर संगति सूरजपाल, नक्कारे पर सतवीर सिंह और ढोलक पर राजेश खन्ना की है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्रज कला केंद्र मथुरा।

0: हाँ लाला।
1: मुखिया जी
0: कहो,
1: आपको सम्मान है, बैठिए।
0: आदर से हमको

कुदरत की मार बचे कैसे। आलेख विजेंद्र सिंह वर्मा का था। प्रतिभागी कलाकार थे ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश सिंह सिसोदिया, नसीम बानो उर्फ लता रानी, श्रीमती जाफरी, होतीलाल, रामहेत, धारा खान, ताराचंद प्रेमी, गणपत लाल। हारमोनियम पर संगति दे रहे थे सूरजपाल, नक्कारे पर थे सतवीर सिंह और ढोलक पर राजेश खन्ना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्रज कला केंद्र मथुरा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचार होंगे पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
3: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल।

0: और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High-Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2000.